0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 आ अब स्वीकार करी आपन दोस्त दीप।

0: लेके आ गइल बानी अपना साथ स्वास्थ्य खजाना से भरल कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल। जे में हम लावेनी रउआ स्वास्थ्य खातिर कुछ हर्बल उपाय, जैसे राउर स्वास्थ्य रही बेहतर आ रहे रउआ खुशहाल। तो चली आज के कार्यक्रम की शुरुआत कई जाओ। दोस्तों आज हम बताएं बबूल के बारे में। बबूल कड़वा रस में मधुर, विपाक में कड़वा, गुड़ में रुच, सिनग्ध और भारी होला। ई प्रकृति में ठंडा, संकोचन करे वाला, जलन शामक, मूत्र लावे वाला, विष के नाश करे वाला, श्वेत प्रदर, गर्भाशय के स्त्राव। और इस सूजन दूर करे वाला, घाव के जल्दी भरे वाला, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, व्रीय विकार, खांसी, प्रमेह, मुंह के छाला एवं दांत के रोग मिटावे वाला। तथा शरीर के बल और पौरुष शक्ति बढ़ावे वाला होला। एक रासायनिक तत्व ई होला कि बबूल के छाल, पत्ता और फल में टैनिक और मैलिक एसिड नामक तत्व पावल जाला, परंतु सबसे अधिक टैनिक छाल और कली में होला। ऐसे प्राप्त गोंद में शंकरा, मैलिक एसिड, एरेबिक एसिड, छार, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम नामक तत्व भी पावल जाला। औषधि खातिर बबूल के छाल, पत्ता व फल प्रयोग में लावल जाला। दोस्त लोग आई जानल जाओ बबूल के रोग उपचार के बारे में। रोग में रोजाना बबूल के कोमल टहनी के चबावे से ढीला दांत मजबूत हो जाला और मसूड़ा से खून आवल भी बंद हो जाला। यदि दांत बहुत मैला हो गई होके तो दंत मंजन इस प्रकार तैयार करी कि 60 ग्राम बबूल के लकड़ी, 24 ग्राम भूनल होकल फिटकरी और 12 ग्राम सेंधा नमक लेके बारीक चूर्ण बना ली। और रोजाना ऐसे मंजन करी तो ऐसे दांत रोग दूर हो जाए। शीघ्र पतन और प्रमेह में बबूल के 5 कोमल कोपल के छाया में सुखा के चूर्ण बनाई। आए में बराबर के मात्रा में मिश्री मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में लेवे से शीघ्र पतन और प्रमेह में लाभ होला। व्रीय विकार में बबूल के कली के छाया में सुखा के बराबर मात्रा में मिश्री मिला दी और कुछ समय तक 1-1 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम लेते रहे से व्रीय संबंधी प्राय सब दोष दूर हो जाए। पसीना अधिक आवत होके तब बबूल के पत्ता और छोटा हरड़ समान मात्रा में लेके चूर्ण बनाई। चूर्ण से पूरा बदन पर मालिश करे से अधिक पसीना आवल रुक जाए। आ मालिश के 1-1/2 घंटा के बाद स्नान कर ली। कमर के दर्द में बबूल के फली, गोंद और छाल के बराबर मात्रा में लेके पीस ली। आ दिन में 6-6 घंटा के अंतराल पर रोजाना जल के साथ सेवन करे से कमर दर्द में राहत मिली। में सुबह शाम 2-2 चम्मच के मात्रा में कुछ दिन तक बबूल के छाल के काढ़ा पिए से श्वेत प्रदर में काफी लाभ हुई। यदि बबूल की गोंद की देसी घी में तलने के बाद सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में कुछ दिन तक दूध के साथ सेवन कर जाए तो ई रोग में लाभ हुई। हिचकी में यदि कोनो उपाय से हिचकी आवल बंद नहीं के होत तब बबूल के कांटा की मात्रा 5 ग्राम के जौ कुट करके आधा सिर पानी में उबाल के काढ़ा बना के और ओई में थोड़ा सा शहद मिला के पियल जाए तो बराबर उठी वाला हिचकी भी बंद हो जाए। शरीर के जलन, दाह, सुजाक के जलन और चर्म रोग में 10-15 ग्राम जल में 10-15 ग्राम बबूल के कोपल और गोखरू रात के भिंगा दी। सुबह पानी में इस सब द्रव के मसल के पीली ऐसे इस सब रोग के साथ साथ पेशाब में होके वाला जलन भी दूर हो जाई और पेशाब भी खुल के आवे लगी। दोस्त लोग अब हम बतावे जात बानी अंजवाइन के बारे में। पत्ता में विटामिन, खनिज, पाचक तत्व, प्लांट हार्मोन्स और स्थिर तेल होला। ई तेल से तंत्रिका जाल के प्रशमित कई जाला, ऐसे मन के शांति मिलेला। एकर बीज पेट में संचित वायु के बाहर निकालेला, मूत्र प्रवाह बढ़ावेला और यौन शक्ति बढ़ावे में मदद करेला। में उत्तेजना और हल्का जुलाब लावे के भी गुण होला। इसे अनचाहा गर्भ के गिरावल जा सकेला तथा आक्षेप संबंधी उपद्रव के भी शांत कइल जा सकेला। वात रोग और गठिया में अंजवाइन में क्षार तत्व अत्यधिक मात्रा में पावे जाए के कारण ई अम्लीय प्रभाव के दूर करे में सक्षम है। यही कारण ई अम्ल विष वात रोग और गठिया में अधिक लाभदायक है। एकर बीज के रस निकाल के सेवन करे से ई रोग में लाभ हुई। अर्थराइटिस रोग में अंजवाइन में उच्च मात्रा में सोडियम पावे जाए के कारण ई जोड़ में लाइम और मैग्नीशिया के जमे ना देवेला। ई ऐसन विजातीय और हानिकारक तत्व के पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देवेला जिससे जोड़ के दर्द और सूजन दूर हो जाए। अधिक लाभ खातिर एकर ताजा पत्ता के रस पिए के चाहिए। सामान्य कमजोरी में अंजवाइन के जड़ के छाया में सुखा के चूर्ण बनाएं। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करे से कुपोषण और अन्य कारण से उत्पन्न होके वाला कमजोरी दूर हो जाए। में यानी नींद लावे खातिर अंजवाइन एगो उत्तम साधन है। एकरा पत्ता के रस शहद में मिला के रात के सूते से पहले सेवन करे से तनाव कम हुई और गहरी नींद आई। अपच दूर करे खातिर अंजवाइन के बीज एगो उत्कृष्ट उपाय है। एकर बीज के लस्सी में 5-6 घंटा भिंगाई आ फिर उ लस्सी के इमे घोट के पी जाए। यदि चाहे तो इमे थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल दी। नाड़ी मंडल के व्यक्तिक्रम में समान मात्रा में अंजवाइन और गाजर के रस पिए से नाड़ी मंडल में व्याप्त कमजोरी दूर हो जाए जैसे एके अनेक व्यक्तिक्रम के शमन हुई। आज हमनी के जननी हसन बबूल के बारे में और अंजवाइन के बारे में। तो फिर काल हो हम कुछ दूसर नुस्खा लेके आए। तब तक खातिर दी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति और रखी रहो आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। नमस्कार।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0096-575।
8: नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव ऊर्जा का स्रोत है, शिव ऊर्जा को दिशा दिखाते हैं। अब आगे
9: अरे नील,
10: अरे नहीं नहीं कोई और है।
9: नील के पास भी ऐसे ही बाइक थी ना, पता नहीं अभी कहाँ होगा,
10: स्टोरी सुना रहा होगा किसी को।
11: एक्सक्यूज मी, आई थिंक आप लोग भी उसी नील की बात कर रहे हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
9: नंदू वाला नील?
10: यस एग्जैक्टली। इजंट इट स्ट्रेंज कि एक आदमी कॉमन है हम लोगों की जिंदगी में, जिसकी वजह से आज आप और मैं बात कर रहे हैं। इट्स लाइक नील ने दो स्ट्रेंजर्स को मिलवा दिया।
11: यही तो है अमरनाथ की यात्रा का चमत्कार। इस सफर में हमेशा कोई ना कोई चमत्कार होता ही है, ये मैंने सुना तो था, आज एक्सपीरियंस भी कर लिया।
9: अग्रीड, क्या पता हम जैसे और लोग मिल जाएं हूज लाइफ नील हैज टच्ड।
10: तो चलें। बाय द वे आप कैसे आए हो यहाँ, हमारी बस ने तो हमें यहीं छोड़ दिया।
11: नो प्रॉब्लम, हमारी बस में कुछ सीट्स खाली है, साथ चलते हैं।
12: हम बाप रे, ये पहाड़ चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, ऊपर से मैं अकेला कैसे चढ़ पाऊंगा।
9: आप अकेले चढ़ रहे हो अंकल, आपके साथ कोई नहीं है?
12: जी नहीं बेटा।
9: आइए मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको मदद हो जाएगी।
12: थैंक यू बेटा, आपके घर वालों ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा लगा देख के।
9: एक्चुअली अंकल, टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी बिगड़े हुए ही थे और फिर मेरी लाइफ में एक लड़का आया, उसने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करते हैं। बाय गॉड, मेरी तो लाइफ ही चेंज कर दी उसने।
12: बॉयफ्रेंड?
9: आई विश।
12: अच्छा अच्छा, नाम क्या है?
9: नील, नील, सी आई डोंट इवन नो हिज फुल नेम।
12: नील, वो सांवला सा, लंबा सा, हट्टा कट्टा, जो अपनी बाइक नंदू पर घूमता है, है?
9: हाँ, पर आपको कैसे पता?
12: ये देखो, नील तुम्हें अपने दोस्त की तरह कुछ सिखा कर गया और मुझे अपने बेटे की तरह, और उसी के कहने पर तो मैं इस अमरनाथ की यात्रा पर महादेव के दर्शन करने आया हूँ।
9: दिस इज सो स्ट्रेंज अंकल, मैं भी तो उसी के कहने पर आई हूँ।
10: हे वेट, ये प्लास्टिक की बोतल आपने फेंकी ना?
13: हाँ, पर
10: तालियां।
13: सॉरी सॉरी, उठा रहा हूँ अभी, उठा रहा हूँ मैं।
14: क्या बात है यार, हमारे चर्चे यहाँ तक पहुँच गए।
10: ऑल क्रेडिट गोज टू वन पर्सन, नील, उसी ने तो सिखाया ये सब करना।
9: अंकल, हम यहाँ नील के कहने पर आ तो गए हैं, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ना उसका कोई नंबर है, ना सोशल मीडिया पर है वो, पता नहीं कहाँ होगा। हमको बुलाकर खुद ही गायब है।
12: अरे ऊपर होगा शायद, पहाड़ों की चोटी पे। वैसे एक बात सुनो, हम भी पहाड़ों पे हैं और पहाड़ों में आवाज इको होती है, इको इको इको, पता है ना है? तुम एक बार चिल्लाओगी तो चार बार आवाज आएगी है, और क्या पता उन चार बार में से एक बार आवाज नील के कानों तक पहुंच जाए।
9: नॉट अ बैड आइडिया अंकल, पर लोग मुझे पागल तो नहीं कहेंगे ना?
12: अरे कोई कुछ पूछेगा नहीं, पूछे तो बोल देना मैं शिव जी का नाम ले रही थी, उनका नाम भी तो नील ही है।
9: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेट्स डू इट। नील!
13: अरे कोई नील को बुला रहा है। आंटी लगता है हमारे अलावा भी नील से कोई मिलने आया है।
9: वो लड़की चिल्ला रही थी नील का नाम, जा बेटा पूछ के आना जरा, शायद वो नील का पता दे दे।
13: मैडम आप नील नील क्यों चिल्ला रहे हो, कोई घूम गया है क्या?
9: घुमा नहीं यार, पहले मिल तो जाए।
14: तुम अभी नील के नाम से चिल्ला रही थी ना, हम भी एक नील को ढूंढ रहे हैं।
10: इट्स सो स्ट्रेंज।
14: नील, नील का है, मिला नील?
9: तुम भी नील के लिए?
14: रुको देखती हूँ मैं उसे, मिल जाए बस एक बार।
12: पता नहीं हम सबका नील एक ही है या अलग अलग, पर सारे मिलके नील नाम चिल्लाए।
15: हाँ हाँ, why not, ट्राई करते हैं।
16: नील!
9: बेटा वो देखो, वो ऊपर पहाड़ की चोटी पे, नील बेटा!
14: लेकिन मेरे नील की नंदू तो नहीं दिख रही।
11: कम ऑन, वहाँ बाइक नहीं जाती, पैदल ही चलना पड़ता है। चलो उसे बुलाते हैं।
14: गाइस देखो, नील हाथ दिखा रहा है।
9: हे नील!
15: हैं? ये क्या, वो तो इशारा करके आगे निकल गया।
12: अरे वो कह रहा है कि ऊपर चलो महादेव के दर्शन के लिए, इतने दूर हम लोग उसी के लिए आए हैं ना, तो चलो चलते हैं, चलते हैं।
14: सही है ना, वो कम से कम 200-300 मीटर दूर होगा हमसे, इतना दूर वापस थोड़ी ना चढ़ेगा वो।
9: राइट, उससे डबल मेहनत क्यों करवाए, हम ही चलते हैं ना ऊपर। Somebody just keep an eye on him, हाँ?
14: हाँ हाँ बेटा, मुझे दिख रहा है। चलो, हर हर महादेव,
16: हर हर महादेव।
11: बस पहुंचने ही वाले, बस 30 मीटर और।
12: बेटा नील फिर से कुछ इशारा कर रहा है।
9: अरे वो तो गुफा में चला गया, शायद हमें भी अंदर बुला रहा है।
12: हाँ तो चलते हैं। जय बाबा बर्फानी, बोलो बम बम भोले।
9: अरे कहाँ गया मेरा नील?
12: यहीं कहीं होगा भीड़ में, देखो ठीक से, देखो देखो।
15: नहीं वो अंदर तो गया था ना पक्का?
9: हाँ अंदर जाते हुए तो मैंने देखा, पर बाहर आते हुए किसी ने देखा क्या?
14: नहीं, सबसे आखिरी में आई हूँ अंदर, मैंने कुछ नहीं देखा।
10: हाँ हमने भी नहीं देखा।
11: ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज सो स्ट्रेंज यार।
14: दिस इज इम्पॉसिबल, यही कहीं होगा।
9: कोई चेक करो ना प्लीज, कहाँ चला गया वो?
14: बेटा वो देखो, वहाँ पुजारी दिख रहे हैं, शायद वो नील को जानते हो या उन्होंने उसे देखा हो।
10: हाँ हाँ लेट्स आस्क हिम।
14: पंडित जी आपने किसी नील नाम के लड़के को देखा है? लंबा सा है वो, नंदू पर घूमता है। ओ सॉरी, आपको नंदू कैसे पता होगा? उसके पास ना एक बाइक है जिसका नाम है नंदू। वो ना अभी अंदर आया था, शायद आप जानते हो उसे।
17: अमरनाथ में तो मैं एक ही नील को जानता हूँ बेटा, आप जिसे ढूंढ रहे हो उसे तो मैंने नहीं देखा।
11: अरे पंडित जी ऐसे कैसे, हम उसी के पीछे तो आए थे, हम जब अंदर आए उससे 2 मिनट पहले ही वो अंदर आया था।
14: पंडित जी नील ने बताया था कि वो यही रहता है अमरनाथ में।
17: बेटा अमरनाथ में एक ही नील रहता है और वो ये रहे आपके सामने, नीलकंठ।
9: ये आप क्या कह रहे हो, हमारा नील तो?
12: बेटा अब नहीं मिलेगा।
9: क्या?
12: अरे नहीं मिलेगा।
9: पर क्यों?
12: ईश्वर एक ही बार मिलते हैं, लेकिन हमको तो दो दो बार मिले, लेकिन अब नहीं, अब नहीं मिलेंगे।
15: अंकल क्या हो गया आपको? आप ठीक हो ना? आई गेस यू नीड सम वॉटर।
11: हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
12: अरे बहकी बहकी बातें नहीं बेटा, सारा मैं क्या कह रहा था कि कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा, तुम नील कह के चिल्लाओ। हैं? वो क्यों? क्योंकि नील किसका नाम है?
9: शिव का। तो क्या
12: वो शिव ही तो थे? शिव, भगवान शिव शंकर, जो हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन बदल के चले गए और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए तो कहते हैं ना कि मनुष्य बहुत अज्ञानी होता है। चलो अब सच्चे दिल से और साफ मन से जाके हम अमरनाथ का दर्शन करते हैं और हर वो बात याद रखते हैं जो भोलेनाथ हमको सिखा कर गए। बोलो हर हर महादेव।
16: हर हर महादेव।
8: क्यों बिड़ू, कैसा रहा ये सफर? कैसे लगे भोलेनाथ की कहानियां? कुछ सीखा, कुछ समझा? बिड़ू अगर हाँ तो बस एक काम और करने का, उसको अपने लाइफ में उतार लेने का। मैंने क्या सीखा बताऊं? मैंने सीखा कि शिव जीने का तरीका सिखाते हैं, शिव लोगों से मिलने का सलीका सिखाते हैं। मैंने सीखा कि जब भी तुम किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि तुम स्वयं शिव से मिल रहे हो, क्योंकि ना जाने किस रूप में शिव हमें मिल जाए, जैसे कि नील मिला हम सभी को। तो बाबा की हर बातों को याद रखने का, और बस याद नहीं रखने का, उसका अनुसरण करने का, उस पे अमल करने का। और मैं हमेशा अपने दिल से यही मांगूंगा कि शिव महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। ऐसे ही किसी मोड़ पर फिर मिलूंगा मैं। मेरा इंतजार करना, और मैं भी इंतजार करूंगा कि कब मैं फिर आपके सामने हाजिर। चल बड़ू, मिलता हूं फिर। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
18: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
19: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
18: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत पर मचा कोहराम, जिले के 2,83,000 लोगों को सीधे खाते में भेजी गई पेंशन की राशि, भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, और शनिवार को आ रहे हैं प्रभारी मंत्री जनता दरबार में, भूमि से संबंधित मामलों की सुनेंगे फरियाद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के माझा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भड़कुइया गांव के पास एक हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों दंपति विद्यालय में अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए गोपालगंज शहर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतकों की पहचान की गई, दोनों मृतक बरौली थाना क्षेत्र के सरया बिसुनपुरा निवासी सेराजुल मियां और इनकी पत्नी शकीला खातून बताई जा रही हैं। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी भड़कुइया के नजदीक दुलदुलिया मोड़ के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जख्मी हो गए, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सिराज मियां अपनी पत्नी शकीला खातून के साथ गोपालगंज के ही हरखुआ गांव में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बुधवार की सुबह दोनों अपने बेटे हुसैन और बेटी नेहा से मिलने जा रहे थे। उन्हें बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक सिराज मियां अपने 5 बहनों के इकलौते भाई थे। घटना के बाद सभी बहनों, माता पिता सहित पूरे परिवार और मोहल्ले में कोहराम मच गया। बच्चों ने सुध बुध खो दिया। छोटे छोटे बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया। जो भी इस घटना को सुनता था उसकी आंखें भर जाती थी। इस हृदय विदारक घटना से अस्पताल परिसर में भी चीख पुकार मच गया था। मृतक के परिजन अस्पताल परिसर में पहुंच गए और दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिया और आगे इस मामले में अज्ञात वाहन के संदर्भ में जांच पड़ताल कर रही है। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े जिले के लाभार्थियों के लिए आज का दिन खास रहा। गुरुवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेज दी गई। पटना से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के लाभार्थियों को पेंशन की राशि हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम का गोपालगंज के समाहरणालय के सभा कक्ष में सीधा लाइव प्रसारण किया गया, जहां जिलाधिकारी समीर सौरभ सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े सैकड़ों लाभार्थी भी मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए पेंशन राशि के DBT हस्तांतरण को देखा। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 283,732 लाभार्थियों के लिए 31,20,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या एवं भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण जो दिया गया उसके अनुसार वृद्धा पेंशन के तहत 1,69,485 लाभार्थियों के लिए 18.64 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में 46,504 लाभार्थियों को 5,11,00,000 रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 19,231 लाभार्थियों के लिए 2,11,00,000 रुपए और बिहार सरकार ने सशक्तता पेंशन योजना के तहत 23,355 लाभार्थियों के लिए 2,45,00,000 रुपए की राशि निर्धारित थी। इसके अलावा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 23,609 लाभार्थियों के लिए 2,59,00,000 रुपए तथा एक अन्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 2,548 लाभार्थियों के लिए 28,00,000 रुपए की राशि निर्धारित थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है और इससे लाभार्थियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिलती है। अब सरकार की ओर से DBT प्रणाली के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है तथा लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है, जो अधिक सरल और प्रभावी बना दिया गया है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों एवं आधार संबंधित विवरण को अद्यतन रखने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि बैंक खाता सक्रिय रखने तथा आधार से बैंक खाते से संबंधित आवश्यक विवरण सही और अद्यतन रहने से पेंशन की राशि हस्तांतरण करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की एजेंडा वार समीक्षा की गई। इस दौरान विद्यालयों की आधारभूत संरचना, भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्धता, आवेदनों के त्वरित निष्पादन एवं विद्यालय निरीक्षण सहित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए गए। भूमिहीन विद्यालयों के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में 83 भूमिहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए 20 डिसमिल भूमि, कक्षा 9 से 12 तक के उत्क्रमित विद्यालयों के लिए 75 डिसमिल भूमि, विद्यालय के पोषक क्षेत्र में ही चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित अंचलाधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी को समन्वय के साथ अविलंब भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन के लिए निर्देशित किया गया है। प्राथमिक स्तर के भूमिहीन विद्यालयों में कुचायकोट में सर्वाधिक 10, विजयपुर में 5, बैकुंठपुर में 4, जबकि बरौली, गोपालगंज और सिधौलिया में एक एक विद्यालय शामिल है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के भूमिहीन उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में कुचायकोट में 19, बरौली में 11, बैकुंठपुर में 9, पंचदेवरी में 8 एवं थावे में 7 विद्यालय शामिल है। इन विद्यालयों के लिए भी संबंधित अंचलाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान सासा मुसा ओवर ब्रिज पुल के समीप वाहनों की जांच शुरू की थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पुलिस ने रोका, तभी वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी विधि विरुद्ध बालक निकला। जानकारी होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। हालांकि कोई अवैध सामान गाड़ी से बरामद नहीं हुआ, परंतु वाहन के सही कागजात आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसे सत्यम कुमार, पिता सूरज राम साकिन सासा मुसा मिश्रौली, थाना कुचायकोट के द्वारा दिया गया है और इस मोटरसाइकिल को भटवा ओवरब्रिज पुल के पास पहुंचाने की बात कही गई थी। मोटरसाइकिल किसको देना था इसकी जानकारी उसको नहीं दी गई थी। अब विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसमें आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। गाड़ी चोरी की बताई जा रही है और इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। शनिवार यानी 12 सितंबर 2026 को जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री गोपालगंज आ रहे हैं। इस दौरान वे 10 बजे अंबेडकर भवन में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जन संवाद कार्यक्रम में मंत्री तथा संबंधित विभागों के बड़े अधिकारी जनता के बीच कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। इस दौरान भूमि से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाती है और मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन सर्वे और जमाबंदी से जुड़ी गड़बड़ियों के मामलों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। अधिकारियों की उपस्थिति जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस संवाद में जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी एक साथ मौजूद रहते हैं ताकि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई भी हो सके और मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सके। इस बैठक का पहल आम लोगों को अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति देना है और इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अगर आपको भी भूमि से संबंधित कोई शिकायत है तो आप अंबेडकर भवन में शनिवार को सुबह 10 बजे से पहुंचकर प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जाना होगा, जहां बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा, जो गोपालगंज के प्रभारी मंत्री हैं, वे आपकी शिकायतों को सुनेंगे और उसे मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास भी करेंगे। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र के कोइनी में सड़क के किनारे झाड़ियों में रखी 653 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बंटी बबली शराब यहां झाड़ियों में छुपा कर रखी गई थी, कहीं सप्लाई करना था, तभी पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने छापेमारी कर शराब के इस बड़े कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया है। हालांकि इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट के अमुआ बथान स्थित श्री राधा कृष्णा संस्कृत उच्च विद्यालय में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया, जहां जांच के दौरान कुछ खामियां मिलने की सूचना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए बाबू जान मियां, पिता स्वर्गीय शहीद मियां, और असुद्दीन मियां, पिता स्वर्गीय कलामुद्दीन मियां, तथा रिजवान मियां, पिता अब्दुल मियां, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर पहले से मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि 12/6/2026 को पूर्व के विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा वादिनी के घर पर जाकर मारपीट की गई। इसी संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था और जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई। अब इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की और उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन और बेहतर समन्वय के साथ जवाबदेह एवं परिणाम परक कार्यशैली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना भी है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सिंगल विंडो सिस्टम से प्राप्त आवेदनों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनका त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों का निरीक्षण कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, पठन पाठन की गुणवत्ता तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का अनुश्रवण करते हुए कमियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगर थाना की पुलिस ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर जबरन जमीन पर कब्जा करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में आरोपी जो हरखुआ वार्ड नंबर 23 का रहने वाला ज्योतिष प्रसाद है, इसे पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक महिला ने जबरन उसकी जमीन पर शौचालय निर्माण कराने तथा जमीन खाली करने को कहने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में गिरफ्तार कर आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जादवपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव में घर में पंखे का तार जोड़ते समय करंट के चपेट में आए पिता पुत्र बुरी तरह से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि पिता को बचाने के लिए पुत्र भी सहायता करने गया तो वह भी बिजली के करंट के चपेट में आ गया, जिससे दोनों झुलस गए। फिलहाल दोनों का मॉडल सदर अस्पताल गोपालगंज में इलाज चल रहा है। बिशम्भरपुर थाना की पुलिस ने 171 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जमुनिया स्थित हरि यादव के घर के पास वाहन की जांच करते हुए इस गाड़ी और शराब को पकड़ा है। इस मामले में मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए आरोपी राहुल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो बिशम्भरपुर के ही काला मोटिहनिया का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत पर मचा कोहराम। जिले के 2,83,000 लोगों को सीधे खाते में भेजी गई पेंशन की राशि। भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और शनिवार को आ रहे हैं प्रभारी मंत्री जनता दरबार में, भूमि से संबंधित मामलों की सुनेंगे फरियाद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
16: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
17: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
16: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
17: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
18: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
19: एक रंग इश्क का।
20: अब तक चढ़े इश्क के रंग में आपने मीनल के अल्हड़पन को, उसके बचपन को और उसकी प्यारी सी दोस्त अम्मिया को जाना। आपने ये भी जाना कि कैसे सपनों की उड़ान ने उसे अपने घरोंदे से दूर लाकर एक अजनबी शहर मुंबई में छोड़ दिया है, जहां वो अपने वजूद की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है। और यहां उसकी पहली नजर मिली कॉलेज के एक टीचर डेविड से, और नजरों से बात जब मुलाकात तक आई तो क्या हुआ। तो आइए अब उसके आगे का पन्ना पर। कोई कहे इश्क के रंग हजार, मेरी नजर तेरा रंग इश्क का। हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। इश्क में डूबे हुए लोग ना कैसे कैसे मोती ख्यालों के समंदर में से निकाला कर, कुछ डूबने की बात करते हैं, कुछ तैरने की बात करते हैं, कुछ ख्यालों में खोए से रहते हैं, कुछ अपनी बात करते हैं, कुछ गैरों की बात करते हैं। इश्क में रहते हुए हालात ही कुछ अजीब से होते हैं, जरा सी बेचैनी अच्छी लगती है। पर उस हालात को क्या कहेंगे आप, जब इश्क हो रहा हो और आप खुद को मना करते हैं कि आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कई बार आप खुद में खुद की तलाश करते हुए कई सवालों के जवाब मुस्कुराते हुए ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि मीनल। मीनल जब से डेविड से मिली है, मिली क्या है, बस देखा ही है उसे, उसके बारे में सोचे जा रही है। अपने हॉस्टल के रूम पे एक किताब को अपने सीने पे रख के ऊपर छत को देखती हुई कुछ सोचे जा रही है और मुस्कुराई जा रही है। तभी अम्मिया उसके कमरे में आती है, मीनल के हाल को देखकर पूछती है, क्या बात है, आखिर इतनी खुश कैसे है। मीनल बिना झूठ बोले और सच बताए कुछ ख्याली कविता के अंदाज में उसे कुछ बोल जाती है, जिससे अम्मिया को कुछ समझ भी नहीं आता और मीनल का दिल भी हल्का सा लगता है। मीनल ने अपनी लाल डायरी निकाल के एक शेर पढ़ा, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, तमाम उलझने हिजरा सी कैद है, अभी दम लेने दो मेरी तितली को। फिर धीरे से मुस्कुराई और खुद में खुद को शाबाशी देते हुए हंसने लगी। मीनल की ये हरकत देख अम्मिया बोली, लो फिर चली गई है अपने ख्यालों की दुनिया में। अम्मिया ये कहते हुए वहाँ से चली गई। मीनल बहुत खुश थी। कभी कभी मीनल थोड़ा सोचने भी लगती कि क्या वो ये सही कर रही है, क्या ये सब बहुत जल्दबाजी में नहीं हो रहा। खैर, अल्हड़ जवानी और मगरूर पानी कहाँ किसी का इंतजार करते हैं, वो तो अपने ही रास्ते अपने हिसाब में बहते जाते हैं। मीनल ने भी कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि अब वो ज्यादा किसी ख्याल को अड़चन नहीं बनने देगी और खुद को आजाद बहने देगी। मीनल ने अपनी अलमारी को खोला और उसमें कुछ रंग और एक कागज को निकाला। आज फिर से वो एक तस्वीर बनाना चाहती है, कुछ रंगों को कैद करके कुछ ख्यालों को पंख देना चाहती है। वो चाहती है कुछ ऐसा बनाए जिसमें रंग आजाद उड़ते हुए लगे, किसी बादल की जद किसी भी रंग को रोके नहीं, किसी चिड़िया की उड़ान को भी पेड़ कैद ना करे, किसी भी ख्याल को किसी दायरे तक रोका ना जाए। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल ने कागज पर रंग बिखेरना चालू कर दिया। कुछ रंग कागज पर लगे, कुछ उसके हाथों पे और कुछ उसकी जुल्फों को सवारते हुए उसके गालों और कानों पे भी। तस्वीर का तो कुछ पता नहीं, पर पुते हुए रंगों में मीनल बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम किसी छोटे से बच्चे की तरह जो मिट्टी में अपने सपनों की उड़ान को रंग के आता है। मीनल का भी कुछ यही हाल था। मीनल अपनी रंगाई पुताई में लगी पड़ी थी कि अम्मिया बालकनी से आई और बोली,
19: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का, कृति के साथ सिर्फ गाना पर।
20: अरे मीनल, तू यहाँ क्या लगी हुई है, पन्ने पर बात कर रही है? वो नीचे देख, डेविड सर आए हैं, शायद ऑडिटोरियम जा रहे हैं। लगता है अभी सामने वाले बगीचे में कुछ फूलों की तस्वीर कैद कर रहे हैं। मीनल के रूम के आगे ही ऑडिटोरियम था और सामने बगीचा। यूनिवर्सिटी बड़ी ही बेहतरीन तरीके से प्लान। सामने वाले बगीचे में मिस्टर डेविड और मिस्टर शिवम, जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, घूम रहे थे। डेविड ने उन्हें भी अपने साथ रखा हुआ था और फूलों को अलग अलग नजरिए से समझाने की कोशिश में लगे थे। मीनल बाहर बालकनी में आई, जहाँ से गार्डन साफ साफ दिखता था। बड़ा ही बेहतरीन नजारा होता था अक्सर मीनल की बालकनी से, पर आज तो नजारा और भी बेहतर था, क्योंकि सामने डेविड जो थे। डेविड को देखकर मीनल के चेहरे पर अलग ही खुशी आने लगी थी। वैसे आज डेविड ने लाल रंग की बजाय हरे रंग का कुर्ता डाल रखा था, पर अब शायद रंगों का इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। खैर, इस बार डेविड को देखते हुए मीनल की आंख की चमक को अम्या ने भी कुछ महसूस किया, पर वो शायद सच जानने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। खैर, इस तरह वक्त गुजर रहा था। डिपार्टमेंट के कुछ लोग मीनल के दोस्त बन रहे थे और कुछ उसके दुश्मन, वो भी बिना वजह, क्योंकि मीनल किसी से कुछ बहस करे ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो आजाद ख्याल में खोने वाली चिड़िया थी। इन डिपार्टमेंट वाले दिनों में उसकी एक अलग खुशी की वजह ये भी थी कि कभी कभी वो डेविड से बात कर लेती थी, और पेंटिंग्स को लेकर उसके जज्बात को देखकर डेविड भी उससे काफी कुछ बताने समझाने लगा था। बहरहाल, जिंदगी की कुछ बेचैन रातों को कुछ जज्बात की चादर ओढ़ के खत्म करने के बाद मीनल और डेविड की बात एक दोस्त की तरह होने लगी थी। मीनल डेविड को बहुत कुछ अपने बारे में बताती थी, क्योंकि मीनल हमेशा बड़बड़ करते रहने वाली चंचल चिड़िया थी और डेविड बहुत कम बोलने वाला था। डेविड अक्सर अपनी आधी से ज्यादा बातें अपनी आंखों के इशारे से ही करता था, उससे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। वैसे भी वो मीनल से 10 से 12 साल बड़ा था, तो उसने शायद इस दोस्ती को एक दायरे तक ही देखा था। ऐसे ही उधेड़ बुन में रहते हुए एक रोज जब मीनल अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, कुछ सोच रही थी, उसकी आधी चादर उसके पैरों से लिपटी हुई थी, आधी तकिए से सिमटी हुई थी और नजर छत पर रख कर कुछ सोच रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
21: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
21: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
21: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
22: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
23: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
22: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
22: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
22: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
19: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
20: टोन बजी तो मीनल कुछ डिस्टर्ब सी हुई, उसने मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, फिर से अपने ख्याल में खोई रही। अमिया को बोली आज हॉस्टल मेस से कुछ खाने को ले आना, जाने का मन नहीं है। अमिया उठी और चल दी। ऐसे ही बैठे बैठे उसे ध्यान आ गया कि उससे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था। मोबाइल की स्क्रीन को खोला तो उस पर दिखा, यू हैव वन अनरेड मैसेज, डेविड सर। मीनल की धड़कन सी बढ़ गई, क्योंकि ये पहली बार था जब डेविड ने सामने से मैसेज किया था। उसके दिल दिमाग पे मैसेज पढ़ने से पहले हजार बातें कौन गई कि मैसेज में क्या होगा। उसने मोबाइल इनबॉक्स खोला तो मैसेज पढ़ा, कल शाम 5 बजे यूनाइट कैफे, तुमसे कुछ खास बात करनी है। मीनल का दिमाग खुशी और नर्वसनेस से सुन पड़ गया कि अब क्या बोले। उसके जहन में कई ख्याल थे, जैसे कि ये क्या हो रहा है, यूनाइट कैफे में तो अक्सर प्रेमी जोड़े जाया करते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ दोस्त भी तो बैठा करते हैं, पर डेविड सर ने अचानक क्यों बुलाया है, क्या बता चाहते हैं, क्या कुछ खास तो नहीं बोलना चाहते, क्या मैंने कोई गड़बड़ की है, क्या उनके दिल में कुछ अलग है, क्या उन्होंने मेरी बात जान तो नहीं ली, और ना जाने क्या क्या ख्याल मीनल के दिमाग को परेशान करते रहे। उस रात मीनल लेटी तो रही पर आंखों से नींद गायब रही। कभी तकिए को जोर से चिपकती, कभी चादर से आंखों पर अंधेरा करती, कभी सोचती कि कुछ भी तो नहीं, और कभी यूं ही उठ के बैठ जाती। बस इसी कश्मकश के साथ उसी रात की बेचैनी में उसने अपनी लाल डायरी को निकाला और अपने शब्दों से एक ख्याल को कुछ इस तरह से कुरेदा। मंजर तन्हा है, एक राज निगाहों में है, मंजर तन्हा है, एक राज निगाहों में है, कहां सुकून गुल में वो बाहों में है, बड़ी रात जगी है मंजिलें उसकी, जिसका हम सफर हिजरा की राहों में है। इस रंग की कहानी में अभी कई और पन्ने पलटने बाकी हैं। क्या सच में मीनल वहाँ गई भी थी, या दिल की तेज बढ़ती धड़कनों ने उसके पैरों को बांध दिया था। अगर मीनल वहाँ गई थी तो डेविड ने उसे क्या कहा, सारे राज से पर्दा उठेगा जब पलटेगा पन्ना और दिखेगा अगला एक रंग इश्क का।
19: एक रंग इश्क का।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादोपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का यह प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट ऐप AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और प्रारंभिक विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6252 6112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेर फेर पर सख्ती के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। राज्य में युवा वकीलों को इसी महीने से स्टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। और प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर अधिकांश जगहों पर स्थिर। कोसी, सोन और गंडक नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से हो रही है बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बताया है। अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय

0: ये मुद्रा कोष के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि ऊर्जा की कीमतें अचानक बढ़ने के बावजूद सेवाओं और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन का नया सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक की एक नई श्रृंखला शामिल की गई है, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों में सुधार होना चाहिए। कोजैक ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें सभी तेल आयातक देशों पर दबाव डालती हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। श्री चौहान ने बताया कि नए चरण में केवल भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण ही नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच पूरी व्यवस्था को एकीकृत किया जाएगा।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेर फेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। पिछली कीमत से आशय छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उत्पाद की सबसे कम कीमत से है। कंपनियां ऐसे तरीके से सर्च रिजल्ट में बदलाव नहीं कर सकेंगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जमाबंदी शुद्धिकरण, सरकारी भूमि की पहचान और नामांतरण के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। पटना में बेगूसराय, मधुबनी और जमुई के अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री सिंह ने मौजावार विशेष अभियान चलाकर जमाबंदियों के शुद्धिकरण का निर्देश दिया। उन्होंने 5 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि के भौतिक सत्यापन और लॉक जमाबंदियों को नियमानुसार अनलॉक करने में तेजी लाने को भी कहा। प्रदेश से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अनुसार कुल 149 बसें चलाई जाएंगी। इनमें 75 एसी और 74 नॉन एसी बसें होंगी। निगम को अब तक 58 बसें मिल गई हैं। इनमें 19 बसें पटना डिपो और बाकी अन्य जिलों के डिपो में भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश के लिए पटना से बनारस, लखनऊ, अयोध्या होते हुए गाजियाबाद तक बसें चलेंगी। वहीं कोलकाता, सिलीगुड़ी, अंबाला और गुरुग्राम के लिए रूट और परमिट की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली के साथ समझौता होने के बाद दशहरा से पहले सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED राज्य में जलापूर्ति योजनाओं का नियमित निरीक्षण और निगरानी कर रहा है। विभाग के सचिव बी कार्तिकेय ने बताया कि अब तक 70,969 जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इनमें 70,027 योजनाएं चालू जबकि 942 योजनाएं बंद पाई गईं। विभागीय कार्रवाई के बाद इनमें से 426 योजनाओं को चालू कर दिया गया है। वर्तमान में 516 योजनाएं बंद हैं, जिन्हें शीघ्र चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में युवा वकीलों को इसी महीने से स्टाइपेंड के रूप में ₹5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। महाधिवक्ता SD संजय ने बताया कि 1 जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत नए वकीलों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिवक्ताओं को 100 रुपये का फॉर्म लेकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पंजीकरण, अनुभव और सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। साथ ही आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने और वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होने का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदन पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। बिहार राज्य परीक्षा समिति ने सत्र 2026-28 में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए स्पॉट नामांकन का अंतिम मौका दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन SM ने बताया कि OFSS के माध्यम से नामांकन 15 से 18 सितंबर तक होगा। नामांकन के इच्छुक विद्यार्थी OFSS के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर खाली सीटों की जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद संबंधित स्कूल या कॉलेज में उपलब्ध सीट पर सीधे नामांकन कराया जा सकेगा। यह मौका CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी मिलेगा। वहीं शिक्षण संस्थानों को 19 सितंबर तक नामांकन का विवरण पोर्टल पर अपडेट करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्नपत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल हुई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में दलहन के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई दाल मिल इकाइयां स्थापित की जाएंगी। कृषि विभाग ने इसके लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन, क्लस्टर स्तरीय संघ, पैक्स, उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक और अन्य पंजीकृत संस्थाएं वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं। राज्य के 14 जिलों में अब भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा नदी का जलस्तर अधिकांश जगहों पर स्थिर है, जबकि कई जगहों पर कमी दर्ज की जा रही है। वहीं कोसी, सोन और गंडक नदियों के जलस्तर में कल दोपहर बाद फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल के 85 प्रखंडों की 44 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए इन जिलों में कुल 1046 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। वहीं पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले में 14 प्रखंडों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 21 मेडिकल शिविर और 31 एम्बुलेंस सहित 6 बोट एम्बुलेंस से लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में 36 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए 160 नावों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 23 पशु शिविर संचालित हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इधर पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। नदी के जलस्तर में प्रत्येक घंटे 2 सेंटीमीटर की गिरावट देखी जा रही है। नदी के जलस्तर में गिरावट होने से अब निचले इलाकों के लोगों को राहत मिली है। बाढ़ पीड़ित बरामा, लखनापार, लखना पंचायत सहित अन्य जगहों पर अब भी खेतों में पानी भरा है। मॉनसून के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: 11 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के महाराजगंज में सबसे अधिक 68.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम ने आयकर विभाग के पटना कार्यालय में पदस्थापित असिस्टेंट कमिश्नर सुनंदा कुमार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले में रिश्वत की रकम लेने में सहयोग करने वाले विभाग के एक सहायक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अधिकारी पर एक स्वयंसेवी संस्था का प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। कटिहार पुलिस ने पोठिया थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस जब्त किए हैं। रोहतास जिले में लंबित मामलों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले 33 पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। रोहतास के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि थाने से तबादले के बाद निलंबित पदाधिकारियों ने मामलों का प्रभार नए अनुसंधानकर्ताओं को नहीं सौंपा था। अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा के पास फुलकाहा थाना क्षेत्र से SSP की टीम ने 17 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने IRCTC घोटाले पर लिखा है, लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 पर आरोप तय, दिल्ली की विशेष अदालत ने धन संशोधन मामले में दिया आदेश, 7 आरोपी बरी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भारतीय विज्ञानियों ने तैयार किया किंग कोबरा के जहर का इलाज। दैनिक भास्कर लिखता है, पैकेज्ड फूड पैकेट पर चीनी फैट तय मात्रा से ज्यादा होगा तो लाल निशान, नए नियम जल्द लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, फरक्का समझौते में बिहार के हितों का रखे ध्यान, पूरे साल मिले गंगा का पानी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के 37 जिलों में 12 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आज अखबार की सुर्खी है, वैश्विक चुनौतियों पर ब्रिक्स महामंथन कल से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायुक्त लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेर फेर पर सख्ती करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। राज्य में युवा वकीलों को इसी महीने से स्टाइपेंड के रूप में ₹5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। और प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर अधिकांश जगहों पर स्थिर, कोसी, सोन और गंडक नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से हो रही है बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: ठीक है, नमस्ते मैम।
16: नमस्ते,
15: और ठीक ठाक है?
16: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
15: मैं ठीक हूँ।
16: तो क्या हो रहा था?
15: मैम इलाज कर रहे थे।
16: अच्छा, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
15: अयोध्या से, अयोध्या के गुंधौर ग्राम से।
16: अच्छा जी, और आपका नाम?
15: सूरज प्रजापति। एक गाना सुनना था।
16: बता दीजिए।
15: गाना है जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आए।
16: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
15: मैम गाय तो
16: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
15: सबसे पहले आपको और जितने सुनने वाले हैं सबसे।
16: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्ते,
15: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हमको गाना सुनना था, सब सुनाऊंगी गाना। मैडम दीदी, आपकी क्या गाना दीजिएगा? बहुत वही जो प्यार में नई देवा कौन सुन के गाना सुना दीजिएगा दीदी आपकी फैमिली।
1: और ये गाना
0: मेरे सबको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी जी, और वैसे आपका नाम?
0: जय किशोर प्रसाद। हम छपरा के रहने वाले, छपरा बिहार के।
1: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना। जी।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: Hello.
11: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: नमस्कार मैम।
14: नमस्कार,
11: बरारी जगदीश से बोलते हैं।
14: कहाँ से?
11: बरारी जगदीश छाओं के बगल से।
14: अच्छा अच्छा, कैसन बानी
11: रहुआनी अपन बताई?
14: जी चलिए बढ़िया बात।
11: पहली बार बात होता है सोनी मैम से। बर्फल
14: अच्छा,
11: बहुत ज्यादा धीरे चलता है फोन, जब 5-7 मिनट हो गए लगा।
14: अच्छा,
11: जब से 11 बजे लगे गाना सुने के बाद कचारी लाल के जेकरा जो नसीब में निकल रहा वे बजा दे।
14: गाना तो वह गा के बता सकते हैं लाइन
11: ना? हम गाना ना गावनी तो उसने सुनवी रेडियो पर एक दिन तो लिया। ये मेरा वाइफ बड़ी गई
15: हेलो
14: जी।
15: नमस्ते मैडम।
14: नमस्ते,
15: क्या हाल बा?
14: जी बढ़िया बा, अपन बताए रहुआ कैसे मानी?
15: ठीक बा, अपन कहे?
14: जी हमार भी बढ़िया बाटे। वैसे क्या बात की फरमाई?
15: गाना सर बात करने में बजा दी और मैंने 200 पढ़ती तब ये बजा
11: फरमाइश से बता दी।
14: चलिए कोनो बात नहीं, रहुए बता दी।
15: हम तो फरमाइश करें बढ़िया साड़ी वाला सिलसिला के बाद में
14: तो दो लाइन गा के सुनाई थी तो ठीक रही
15: ना? दूसरा मेरी गाय
14: ना कहे अभी कोनो दिक्कत बा?
15: कोनो दिक्कत नहीं के।
14: हाँ तो जाए
15: ना? ठीक है, कोनो बात नहीं के, सुना दूंगा ना मैं।
14: कौन सा?
15: ये बढ़िया साड़ी वाला।
14: चलिए तरह गाना प्ले करते नहीं
15: जी।
14: जी गाना आज ना तो कल बाजी हो जाएगी। ठीक बात, प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिंग 90.4 ना।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: अमन कुमार पारनावादा से बोल रहे हैं मैडम
1: जी। क्या हाल चाल बा?
0: ठीक बा मैडम। गाना सुनना है हमको,
1: बता दीजिए।
0: ये गाना नहीं है ये, एक साथ छोड़ देला भोजपुरी गाना, जब समय होला कमजोर कोई साथ छोड़ देला।
1: जी जी,
0: ये गाना हमको सुनना है मैडम। आप लोग को भी सुनवाना चाहते हैं। हमारा लड़का का नाम है राजा गुलशन, अप्पू मेरा भाई है, ये सब दोस्त को सुनाना चाहते हैं मैडम।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: किस दिन बजेगा मैडम?
1: आज नहीं तो कल बजी जाएगा, दोनों दिन में।
0: मतलब टाइम पे बताइए एक बार जी, मतलब किस टाइम पर बजाते हैं थोड़ा।
1: 5 से 7 के बीच बज जाएगा शाम।
0: आज के दिन?
1: आज भी बज सकता है और कल भी। आप 5 से 7 के बीच सुन लीजिएगा।
0: जी मैडम।
1: ओके।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90-65-65-750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का
4: फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्ते मैडम जी।
4: नमस्ते,
9: नेहा बोल रहे भोरे से।
4: जी जी, कैसी है नेहा जी?
9: क्या समाचार है आपका? नाश्ता पानी हो गया?
4: जी मेरा भी बढ़िया है, और नाश्ता पानी भी हो गया। और आपका?
9: मेरा भी अच्छा है।
4: तो क्या कर रही थी अभी आप?
9: आपका इंतजार काम को कर फोन लगा रहे हैं तो अभी लगे।
4: चलिए,
9: काम करते हैं फोन लगाते हैं।
4: चलिए बढ़िया। तो क्या है फिर आज की फरमाइश?
9: फरमाइश अलका याग्निक का गाना।
4: गाने के बोल?
9: अलका याग्निक कोई भी गाना।
4: अच्छा, कोई भी?
9: जी।
4: चलिए बढ़िया। और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
9: जी, आपको जितना रेडियो रिमझिम आगे सब सुनता है, डायरेक्टर और जो अंकल जी है उसको बहुत अच्छा लगता है, और सब दोस्त सब सुनते हैं उसके साथ।
4: जी, वैसे आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
9: सब कुछ अच्छा है, आप लोग अच्छा है, परिवार, रेडियो रिमझिम सब?
4: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
9: तो गाना शाम के चलेगा कि कल चलेगा?
4: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
9: आज बजे है मेरा गाना, कल 8 बजे।
4: आप ये तो नहीं बता सकते, आज या कल, दोनों दिन में बज ही जाएगा, सुन लीजिएगा।

0: करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
1: छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस

0: करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick your phone up.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्ते जी।
6: नमस्ते,
5: कैसे हैं?
6: मैं बढ़िया हूँ।
5: पहचान गई हूँ
6: जी, आप रानी बोल, कैसे हैं?
5: जी मैं बढ़िया। और बताए, नाश्ता उश्ता हो गया? जी मेरा भी हो गया है, आज नाश्ता में कोई लेट नहीं हुआ है, अच्छे से हो गया है। आप बताए, आप अच्छे से किए ना? आपसे ज्यादा देर तक लोग बात करता है ना, तो आपको थोड़ा सा पानी और खाना दोनों जरूरी है ज्यादा देर बात करने के लिए।
6: कितना ख्याल रख रही है मेरा?
5: ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ रिश्ता अपने दूर से बनाया ना बनाए, बड़ी दूर के रिश्ता अपना से कम नहीं होता है, उसके एक रिश्ता वो भी एक अलग होता है ना।
6: जी जी,
5: तो और बताए मौसम कैसा है?
6: मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
5: हाँ, दोनों लगी रही है। और भी वो शो क्यों नहीं हो रहा है 12 बजे वाला? और आज भी नहीं चलेगा?
6: नहीं।
5: और आप लोग के चक्कर में बताइए, हम लोग रेडियो ऑन एयर करते करते अब आवाज सुनने के मिले, अब मिले, अब मिले, बाकी केवल गाने सुनने के मिल रहा है।
6: अब क्या करिएगा? अच्छा, अभी जो रिकॉर्डिंग।
5: हाँ वो तो बात है दीदा जी, आप भी आते तो आपको भी तो लोग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और बात सही है, जब तक अगर उधर से ऑर्डर ना मिले तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सकती हैं।
6: जी जी, ऑर्डर तो है ही, अगर हम 12 बजे वाला शो चलाएं तो फिर ये छूट जाएगा ना।
5: हाँ हाँ, मुझे ये दो रिकॉर्डिंग आप 12 बजे तक में करेंगे जी?
6: नहीं, 12:30 बजे तक होता है।
5: 12:30 बजे तक, और अच्छा करती हैं, आपसे सारे लोग बात करने के लिए बेकरार रहता है और टाइम निकाल के रहता है। और आज मैं बताऊँ तो आज मेरा घर थोड़ी भी खुशियाँ है, और आज मेरे एक भतीजा है प्यारा सा, की उसका आज उसका जन्मदिन है दी।
6: तो मेरे आपसे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
5: और बाबू की तरफ से, उसका नाम है अभिमन्यु कुमार, तो बाबू की तरफ से आपको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच बर्थडे विश करने के लिए। और मैं बताऊं तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी हॉल पूरी डाउन है
6: जी।
5: आज मैं बताऊं आपसे तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बाकी आज बाबू के लिए थोड़ी सी टाइम निकाल रहे, मैंने सोचा था कि आज तो एक गाना बन रहा है ना उसके लिए।
6: जी जी, वैसे क्या हो गया, अपना ख्याल रखा करिए
5: जी। और ख्याल तो रख ही रही थी,
6: तो
5: दिखाने तो जाना पड़ेगा ही
6: जी।
5: तो याद दीजिए बिना देरी किए, जो एक फूल दो मालिन का मूवी है ना, उसमें एक सॉन्ग है बहुत प्यारा, ले मन में से परिश्ता तुमसे कैसा है ना था।
6: जी जी
5: जी, एक सॉन्ग बजा दीजिए।
6: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
5: जी। और ये गाना सभी को रानी की तरफ से, आपको भी तरफ से, और सभी की तरफ से, मेरे तरफ से भी
6: जी।
5: और भी कोशिश करिएगा लोग शो को चलाने के लिए, इसलिए आप सभी के लिस्टनर सब बेचैन रहते हैं सब।
6: जी जी बिल्कुल,
5: अगर आप भी आती तो शो अच्छे लगता, आप भी शो करती तो आपको भी सुनकर तो अच्छा लगता।
6: कोशिश रहेगा,
5: चलिए और भी ना देरी की आगे भी कर लीजिए, और भी बीच में पानी पीते रहिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, आप हैं तो हम लोग भी हैं।
6: अच्छा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
8: जी नमस्कार।
7: नमस्कार,
8: कैसन बनी रहूगा?
7: जी बिल्कुल बढ़िया बनी। आपन
8: नाश्ता पानी बढ़िया से भइल?
7: हाँ हाँ, हो गई बार और भइल।
8: हाँ वे तो हो गई बाटे। मौसम कैसन बा?
7: मौसम ठीक बा। ना ना बारिश तो नहीं हो? ना वैसे नाम बता दिया।
8: ना दिल्ली से, दिल्ली से।
7: अच्छा जी, वैसे क्या होता?
8: हम गाड़ी चलाई थे भाई, लेकिन कौनिया के 11 पहुंच गल बा, तो काहे ना थोड़ा ट्राई करल जा। बुझाता कि ये तीसरा कॉल है हमारे, एकरा मतलब
7: ना दूसरा कॉल
8: है? दूसरा कॉल है। हां, तो काफी देर से बात होत रहला ना, तो ऐसे कौनिया कहीं हो सकता है तीसरा कॉल होके?
7: दूसरा कॉल
8: कम से कम रोक गया है ना, दिन में कम से कम रोक गया। थोड़ा बहुत प्रोग्राम चलाई।
7: जी जी, हम तो जरूर चलाई थी, लेकिन फिर जान है 5 बजे के जान सो चले ला, ओकरो के भी तो चलावल जरूरी बा
8: ना। सुनो भाई, दिन में रहबे ना करल है?
7: तो ठीक है, कोनो बात नहीं, 2-3 दिन और ही के बाद से। तो
8: हां, तो सोमवार के बाद तक कोई प्रोग्राम वो चल जो तारी। तो ऐसे कुछ कहल ना जा सकेला, मान लेने की समय जब आके तो होके ना आवेला के रुके ना।
7: जी
8: सब ही ने जैसे के बैठे। तो कल सुनो भाई, गौरव तो कहां दू साइकिल से, साइकिल कहां दू लड़ा ले रहो आवे में। वही तो हम कौन है, तो कहे ना सुनो भाई की गनवा डेडिकेट कर दिया कि साइकिल से साइकिल लड़ावे ली तो दुनिया देख। आगे बता दिया
7: ला
8: गाना में सबसे पहले अपने के भारतीय सोनू भाई के स्पेशल डेडिकेट भाई आप बाकी जितना केहू सुनी जैसे साइकिल हुए कालू लड़ाई लड़ान जाके था करे के डेडिकेट बा बाकी और भी कोई लाइन लागल बात है ज्यादा टाइम ना लगे हम तो नमस्कार
7: नमस्कार
8: आपका दिन शुरू हो दिल्ली से
7: जी प्ले करते हैं सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM
8: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 एफएम में।
0: मैडम जी प्रणाम।
2: प्रणाम।
0: नाम तो पता नहीं है कि हमारा जो अब्सेंट है भाई का।
2: ना ना बिल्कुल ना।
0: हाँ, कम से कम 185,000 करके छोड़ दे लोनी है। अब ले देखनी तो 3 मिनट कम बात तो कहीं कहीं लगाई न तो आज हमारे दिन खराब चल जाये।
2: अभी दिन खराब ना जाए, देखी फोन लाग गई।
0: फोन लाग गई है बड़का बात बा। तो बात सुनाई
2: सब बढ़िया बा, कैसे बानी?
0: बस ठीक है बानी। रोड लोग ध्यान में वो बना से 11 बजे बानी। हम कहने की इतना पूछा था कि आज बात ना ये हो पाई।
2: अच्छा,
0: लेकिन रोखे वाला रोला तो हो ही गए।
2: वैसे कहा होता रहा अभी
0: काम होता पूरा दो दिन से थोड़ा बिजी रहनी, वही में टाइम निकाल के वो जरूरी था। मैंने की हाजिरी कम से कम लाग जाओ ना तो आज अब्सेंट चल गई। हाँ, एक दिन अब्सेंट लाइक
2: ना भैया।
0: आज ना भैया कब तक चली दो दिन?
2: अभी लास्ट
0: लास्ट तो क्या हुई
2: देखल जाता क्या होता।
0: अरे चलाई वही ना टूटल फूटल टूटल फूटल अगर सर कहते तो चलाई हूँ अपना से ना कहूँ की चलाई, लेकिन सर अगर कहते तो टूटल फूटल डर भय छोड़ के चलाई।
2: अच्छा ठीक बा, सर कहते तो चलबे करी।
0: सर कहें तो चलायम, ये मानना की ना चलायम टूटल फूटल वही हो। कोशिश करें कोशिश करें तो कोशिश करे वाला की कभी हार तो होला ना। ऐसे कोशिश ना छोड़े के
2: नाम बता दिया तुम
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। आज एगो फरमाइश ले ली दिल्ली राज के नया धमाल मचौले बा। भतरा पके होता की तो गर दौरा दे हो। ये सुना दम
2: सुनाए के भी बा।
0: पहला नंबर तो रौरा के सुनावे के बा, बाकी भारती जी के भी सुना देवे के बा, सोनी जी के भी सुना देवे के बा, और जितना हमारा नाम से जाने वाला वही सबके सुना देवे के बा।
2: चलिए करते हैं रौरा गाना। जी सुनाते रहें सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी मैम, नमस्ते।
10: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM।
11: जी मैम, धन्यवाद। कैसी हैं मैम?
10: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: सब आपकी दुआ है मैम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताइए आप।
10: जी जी बोलिए।
11: बोल रहे हैं आप लोग, बताइए आप लोग कैसी हैं? आप लोग ठीक ठाक है ना?
10: जी जी हम लोग भी बढ़िया है, सबको यहाँ पे ठीक ठाक है।
11: चलिए ऊपर वाला की दुआ रहे कि आप लोग और अच्छा से अच्छा रहे।
10: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
11: मैम मैं आपका पुराना श्रोता हूँ, कटिया गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
10: और आपका नाम?
11: मेरा नाम संगम पासवान।
10: अच्छा
11: मैम, एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
10: बिल्कुल,
11: आज बोल रहा हूँ कि एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
10: जी जी बिल्कुल।
11: बेटी ऐसे चल

0: तू ही समझाओ ऊपर वाला दुश्मन बा दुनिया, तू ही समझाओ ऊपर वाला अरे दुश्मन बा दुनिया। बेटी के जितने लोग जान से भी जानी, स्वर्ग में ऊंचा उनका नाम खूब जानी। बेटी के जान से ज्यादा जितने लोग जानी, स्वर्ग में जाए खाती ऊंचा नाम गानी। बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो, बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो। बोली पराया उनकर अतने बकाम हो, होली पराया उनकर अतने बकाम हो। धन्यवाद मैम, हमारा ही लेखनीय शब्द था मैम, अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं माफी चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा ही था और बहुत अच्छा ही गाया आपने।
0: जी मैम, अब मैं यहाँ पे पूना में हूँ, फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ छोट मोट लिखता रहता हूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि कुछ नया किया जाए, कुछ भेजा जाए। और रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुनने वाले हैं, थोड़ा मेरा शब्द को भी लोग सुनेंगे तो शायद अच्छा लगे।
1: बहुत ही अच्छा गाया आपने।
0: जी मैम, खाना वाना खाई कि नहीं मैम?
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: मैम हम लोग तो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, तो आज की फरमाइश यही है?
0: नहीं मैम, फरमाइश वो लेखनीय गाना था, वो गाना नहीं है, मैं खुद बनाया था उस गाने को। और गाना में मैं खुद गाना को मैंने लिखा था उसको, कोई गाना नहीं है मैम। और गाना हमको सुनवा दीजिए अपना जिला को, अनु दुबे का जो सॉन्ग है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरफ जाओगे,
1: क्या आप ये भी गा के बता सकते हैं?
0: तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरफ जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरफ जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। दिल तो बच्चा है इसको ना समझ पाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। यही सॉन्ग है मैम।
1: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं।
0: मैम मैं तो क्या करूँ, मेरे को भी तो चॉइस था कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा मैम, इसीलिए हमको छोड़कर परदेश आना पड़ा, नहीं तो मेरे को संगीत में बहुत मन लगता है मैम।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गा रहे हैं।
0: वो तो इतना प्यार देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि हमारे जैसे आदमी को इतना आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ कि आप लोग के जैसे हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और अंजा आगे भी मैं कुछ ना कुछ रेडियो रूम जिम पे आऊंगा तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आऊंगा और सुनाऊंगा।
1: की और ये गाना जो बताया वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: अरे एकदम एकदम, हमारा मित्र लोग है, एक दुबई में बिट्टू है उनको, और एक मध्य प्रदेश में है सोनू भाई को, और शशिकांत को, अभी वो भी कुवैत में है, इन्हीं लोगों को मैम। तो लोग भी रेडियो है ना मोबाइल के माध्यम से वो भी लोग सुनता है, तो लोग भी बोले थे कि अगर कभी फोन लगेगा तो यार मेरा भी मुझे भी डेडिकेट करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, याद आएगा तो जरूर करूंगा। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं मैम। और हम लोग कटिया में जो भी दुकान वाले भी रेडियो का अपने जैसे सैलून वगैरह होता है उसमें भी लगा कर रखते हैं, और हम लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हैं फिर भी।
1: अच्छा जी चलिए मैम, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम धन्यवाद।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा,
13: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
15: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
17: सलाम अलैकुम मैम।
16: वालेकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: भोपाल में।
16: जी कैसी हैं आप?
12: अच्छे हूँ मैम, आपने बताया कैसे हूँ?
16: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या कर रही थी आप?
12: बस आपके पास कॉल लगा रही हूँ, हमारे बच्चे 5 मिनट से कॉल कर रही हूँ। लग भी दिया बहुत ऐसे, मौसम कैसा है मैम? यहाँ तो बारिश हो रहा है,
16: इधर हल्का धूप निकला हूँ।
12: हाँ इधर भी बारिश हुआ था, बहुत तेज हुआ था, करीब 10 बजे करीब हुआ। अभी भी धूप हल्का बिगड़ भी हुआ, मतलब मौसम ठंडा।
16: जी तो वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
12: गोपालगंज से बोल रहे हैं।
16: गोपालगंज में कहाँ?
12: सरिया।
16: जी
12: गोपालगंज में पड़ता
16: है। चलिए ठीक है, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
12: गाना सुनना है।
16: बता दीजिए।
12: देखा चाहिए गाना सुनना, क्या होता है जो गाना सुनना?
16: और गाना
12: कैसे आपको जितने भी सुनने वाले भाई अभियानी को सबसे सुनाना चाहती हूँ अपने घर वालों को।
16: बोलना जी, तो फिर आपको
12: बाय
16: बाय सुनते रहिए सब साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैं सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका फोन लगाते हुए मैम, तो बहुत मुश्किल से तो अभी तो फोन लगा मैम, 1 घंटा हो गया ट्राई चलते चलते मैम।
0: अच्छा
1: जी जी जी, बहुत बिजी जा रहा मैम।
0: जी जी,
1: और मैम वहाँ का मौसम तो क्या हाल चाल है मैम?
0: मौसम धूप निकला हुआ है।
1: बारिश नहीं है मैम?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
1: जी। हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है मैम, अभी धूप है। अच्छा, मस्जिद बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आज एक फरमाइश है, हम आपके हैं कौन और गाने को बोल है दीदी तेरा देवल दीवाना, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065575।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते, ना आप नाम बता दी। चीनतनी नाम बता दी फिर भी।
6: अच्छा,
7: हम बताएं
6: राजा बताएंगे।

0: तो बता दी कि गणेश बोला था नीना। अरे कहा ना कि कहीं गलती से कि वर के नाम रख देती तो दिक्कत हो जाती।
1: और
0: सब बढ़िया बा, लेकिन ऐसा मत पूछी काहे कि रहुआ जगह पर की वर यहाँ पूछी और जरा और नाम धरन कुछ ना बस रहुआ सभी से बातें होता।
1: अच्छा
0: तो हम चला लेम, लेकिन आप जन कॉल रिकॉर्ड पत्र नहीं करो के तो बनावा जरूरी बा।
1: दोपहर के बाद में की बना सको, दोपहर बाद में की बना सको, समाचार बाद
0: जी तो समाचार के बाद भी तो सोच रहे
1: था
0: ना
1: चले रहता ना चले थी।
0: अच्छा
1: लेकिन कोनो काम से हार ना मान रहा ठीक बा, हिम्मत बाकी ना हम कहे
0: जी जी रवा सब बानी ना तो फिर हम कहा हिम्मत हारे।
1: चलो ठीक बा, मेला का सहारा के बाद तो बोला था गाना बजा दी जब साथ देवे के ना रहे तो प्यार का है के कही जो।
0: अच्छा और गाना
1: के लिए सुनवाए के सुनी दीदी के आरती दीदी के और दिव्या दीदी रखे हम और कृष्णा को भी और जितना रेडियो सुन रहे हैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता
0: हूँ। ओके तो फिर प्ले कर।
1: ठीक बात हम सुन रहे हैं। ठीक बात ये गाना बजाए।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात प्ले कर देना सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.1 में।
0: नमस्ते दीदी, क्या
1: नमस्ते जी।
0: हाल है? हम
1: बढ़िया बा, अपन बताई।
0: ठीक है, सुनो क्या ना उठाएंगे।
1: अभी तो अभी फोन आ होता तो अभी तो उठाई नहीं है।
0: कॉबे रिंग करा करियो कॉबे से।
1: अच्छा, किससे पहले बात होत रहा?
0: हेलो मनोरमा दीदी, यहाँ की भारती दीदी बुझाते नहीं के होती है।
1: रउआ पहचाने की हम के बोलते हैं?
0: लागता मनोरमा दीदी।
1: हाँ,
0: कहते नहीं अजी लागत है। तो बोली, आज सब खाना हो गए?
1: हाँ हो गए बारा। और भैया?
0: हाँ हाँ ये भी हो गए
1: जी। वैसे नाम बता दिया अपन।
0: करिश्मा कुमारी, तीसरा नारायण से।
1: आरा और भैया कैसन बनी?
0: भैया ठीक, भैया ठीक बड़ा। हम सब को लागत रहा सलाई नहीं है कल अंजा हम जा रहे जेनियो देखे बार में लाग गए ले सही।
1: देखिए हम भी, हमके भी पता चल गया कि रुआ फोन करता नहीं, वैसे उठा लेनी है जल्दी।
0: हाँ
1: नंबर तो ना पहचानी है, लेकिन आवाज से पहचाननी है। बहुत ही अच्छा बोले नी रुआ।
0: रुआ भी बहुत अच्छा बोले नी। सबसे मत समाज राहुल लगेला एगो भारतीय दीदी से।
1: हम तो बता दीसन कि हमने के दोनों जनी से अच्छा रुआ बात करे नी।
0: रुआ करे नी
1: चली तो
0: बड़ बोली अच्छा लगेला है। तो सो चली है बेरा
1: वो तो ना चली, कहे से कि
0: ना चली
1: ना, कहे से कि अब हम ई जन कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो एक रुके तो बनावल जरूरी बना।
0: हाँ बिहानो ना चली उससे।
1: तो 2 दिन तक बंदे रही
0: का तारीख चले।
1: अब देखिए जब भारती जी आ जाए तो स्टार्ट हुए। अगर टाइम मिले तो कहीं हम ही स्टार्ट करें।
0: हाँ क्या करें अब,
1: टाइम के हिसाब से देखा जाता।
0: मेला घूमा चले
1: ना, कहाँ फुर्सत बा मेला घूमे के। मेला घूमे चल जान सन तो फिर रउआ लोग के फरमाइश पूरा करी। रउआ करे नी की ना,
0: हमनी गाँव का भी अब आई मेला तक न जान सन। 25-26 ले बाटे हमनी गाँव का मेला।
1: अच्छा अच्छा, बहुत मेला से उठाई ले ले।
0: हाँ ले ले
1: जी। चलिए तो क्या बात की फरमाइश?
0: फरमाइश रहुआ पसंद से, अपना पसंद से
1: ना ना रहुआ लो, इतना मुश्किल से कॉल कर ले बानी लो तो रहुए लो बताई थी तो ठीक रही।
0: आज रहुए पसंद से सुन ले तनी।
1: अच्छा
0: कौन बजा दी अपना पसंद?
1: हिंदी की भोजपुरी?
0: भोजपुरी बजा दी कौन?
1: चलिए ठीक बा, क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
0: हाँ सबसे पहले रहुआ के, भारती दीदी के, सोनी दीदी के जितना सुनता है वहाँ लगे। और
1: चलिए ठीक बात, गाना प्ले करता नहीं।
0: ठीक है, बाय
1: बाय। इन सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009394911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू एसएमएस फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे समय 9:32 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, आप सभी से हर रोज ये बातें बताई जाती है कि पुराने गाने के फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। आप यदि सुनना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। यहाँ पे कुछ मैसेज जो हैं काफ़ी पहले पहुँची है तो उस मैसेज को तो हम शामिल नहीं करेंगे, और तत्काल के जो मैसेज पहुँची है उस मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हम शामिल करते हैं, लिखा गया है कि हर शाम किसी की सुहानी नहीं होती, चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो बात है इस मोहब्बत में यारो, वरना गोरी राधा सांवले की दीवानी नहीं होती। सोनू भाई नमस्कार, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और क्या हालचाल, काफ़ी प्यारी लाइन आपके तरफ से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म राज इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे, प्लीज़ सुना दीजिए सर जी। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। और एक और मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि हाय भाई सुनो जी, हम भी जुड़ गए हैं आपके टाइम से, साथ ही मिस शुक्रिया। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर ऑप्शन रेक्सॉल नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए, तो इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। गाने को प्ले करते हैं कमलेश जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे राज मूवी से इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे।

0: ट्रेडर एमसीएम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि लाजवाब, आज बहुत दिनों के बाद रेडियो पर ये गाना सुनने को मिला। एमडी 97 दरभंगा भजीतपुर से, और कहते हैं कि बस यूं ही सुनाते रहिए। सुनो भैया, बिल्कुल आप लोगों का साथ चाहिए, हम क्यों नहीं सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज, और अभी तो नहीं पहुंचा हुआ है, तो जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, आज सीटें खाली हैं, आप फरमा सकते हैं और अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। हो सके तो अभी जल्दी गाने कोई बता सकते हैं तो उनकी फरमाइश हम प्ले कर देंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और एक और मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि वाओ क्या बात है, बिल्कुल। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली तृप्ति फ्रॉम नवादा से, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सभी से फिर से सूचित करेंगे कि यदि आप पसंद के गाने अपने सुनने चाहते हैं तो बिल्कुल फरमा सकते हैं, आज सीटें खाली हैं। जो भी श्रोतागण फरमाइश पहुँचाएँगे उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आप सभी के बीच उपस्थित होते हैं, तब तक आप सब बने रहे हमारे साथ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
8: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
7: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझेम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि नमस्ते सोनम भैया, क्या हाल है, हमें गाना सुनना है, सुना दीजिए। गोरी है कलाइया लादू तुझे हरी हरी चूड़िया। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले अपना नाम तो नहीं बताए हुए हैं अभी के मैसेज में, और पीछे देखा जाए तो रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली से जुड़े हुए हैं। तो चलिए रंजीत कुशवाहा जी, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि सुना दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल सुनाएंगे और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल को संभाल के रखो, मन को बहका के रखो, कोई तो गोरे पे काली दीवानी होगी, दिल को थाम के रखो। नमस्कार नमस्कार, दिल दीवाना हो तो मन समुंदर हो, पागल दिल हो तो मन मोमबत्ती हो। गाना क्या मौसम आया है, सभी श्रोताओं के साथ सावन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि सोनम भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, गाना सुना दीजिएगा। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, ओहो बिल्कुल करना चाहिए दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय हेलो सोनम भाई, कैसे हैं, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आप बोले कि सीट खाली है इसलिए मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ, और गाना लैला मजनू की फिल्म है। और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे महमूद जी केरला से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि बड़ी मुश्किल बा बड़ी मुश्किल बा, ये वाला सॉन्ग बजा दीजिएगा। तो बिल्कुल कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली तृप्ति, तो आपकी गाने तो कल पूरी किए हैं। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास सीट खाली है। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीट खाली रहेगा तो आप लोगों की फरमाइश यदि बज गया है तो दोबारा नहीं बजेगा, सीट खाली रहेगा तो बिल्कुल बज सकता है। तो फिलहाल आगे बढ़ा जाए और अगले गाने को प्ले करते हैं हम, और सुनते हैं गोरी कलाइया दिला दो तुझे हरी हरी चुड़िया।

कमल के शाम काफ़ी प्यारे टुडे एमजीएम 94 एफएम पे सुन रहे थे अभी अभी, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए थे। चलिए आगे मैसेज देखा जाए और अगले गाने की फरमाइश भी प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और निशा शुक्लवा से मैसेज की हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि शंख सुना दीजिएगा प्लीज़, गाने का बोल भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। और चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार बोलिएगा। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे एक एक करके। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, अखिलेश जी जुड़े हुए हैं, टुनटुन यादव का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आप पुराने गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। फिलहाल हम अगले गाने प्ले करते हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि काहे भाई इतना गुस्सा क्यों? धोखा तो आजकल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, शुक्रिया देकर आप सतर्क हो जाए और भुला दें, तभी आगे खुश रहिएगा। जनहित में जारी है मेरा संदेश, और इस संदेश को भेजते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्षण नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल आपने सही कहा, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए। और आगे मैसेज लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक है। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। सुपर गाना चल रही है भाई। सविता चौहान भोज छपरा से मैसेज करती हैं, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे गाने के उपरांत मैसेज किए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। और इस गाने के फरमाइश करते हैं सावंत शर्मा जी, ये भी काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश किए हुए हैं, क्या मौसम आया है।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन ले हम सब रेडियो 94.4 FM पे सोचल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। निशा इस गाने की फरमाइश करती हैं डुमरिया से और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। एक राजा है एक रानी है, पास पैसा है और जवानी। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज दिखा जाए और लिखा गया है कि कहाँ का मौसम, इतना बढ़िया मौसम आया है। सुनो भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ही आज बारिश, गर्मी और धूप आया है। हम भी वहाँ चले, बिल्कुल इधर तो अभी मौसम ठीक ठाक है। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर ओक्सोल नेपाल बॉर्डर से। तो आप भी गोपालगंज में आ जाए, इधर का मौसम सुहावना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि काफ़ी दिन बाद मैसेज किया हूं सर, अजय कुमार भगत बेलसुई दरौली सिवान से, और हमको गाना सुनना है। ओ बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन काफ़ी लेट कर दिए हैं आपने, तो आप बन रहे हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश हम प्ले कर दें। फिलहाल अगले गाने को प्ले करते हैं।

रेडियो एम सी 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी। और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बिल्कुल काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। और मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और अंतिम गाने भोजपुरी पहुंचा हुआ है, निरहुआ रिक्शा वाला मूवी से, और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं अजय कुमार भगत जी बेलसुई दरौली शिवान से। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, और कई श्रोतागढ़ की फरमाइश अभी भी मेरे पास है, लेकिन समय जो है समाप्ति का हो चुका, तो आज कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होगा, और फिर अगले दिन मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम। तब तक अंतिम गाने के साथ आप सब इंजॉय करते रहें रेडियो एम सी 94.4 एफएम पे, जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रूपए में, HF डिलक्स 77,426 रूपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रूपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रूपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: बनी अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523552599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99349551 पे।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88869-73।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना।

0: सर्जरी की दौरे झटके से या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
2: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरिना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
1: डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
5: This year is a milestone.
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
5: Take to the world as a trusted partner.
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
8: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाखस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
15: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
16: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
14: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
14: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
16: कॉल करें 87894 18744।
17: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
18: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
17: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
18: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
17: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
18: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
17: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
14: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652।

0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी
1: छम छम के अंगूरी बदन
0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: और भरोसेमंद परफॉर्मेंस ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 06 575।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-886973।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
10: देखी, जब हमनी के माता के गर्भ में रहिले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी। अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुन गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ क्या कहतनी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 900-6978856 या 620-3139-564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो

0: नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: Jab phone ke liye bajti hai to kehte hain hello.
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो
11: जी, नमस्ते
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकम 90.4 FM में। धूप तो निकला हुआ है, अभी धूप का छाऊं।
11: बोले कि तू रूपवा के की काम है, रोटी का केन जी, ये गाना है भोजपुरी है मैम
10: जी,
11: बढ़िया गाना है, बढ़िया गाना है, खराब खराब नहीं है
10: जी। हाँ, ये गाना जो
11: आप बजा के चेक कीजिए, तबियत फरमाइश कीजिए।
10: नहीं नहीं, गाना सुने हैं, गाना तो बहुत अच्छा है
11: जी। और ये आशीष पवन जीत
10: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
11: जी। जी नमस्ते।
10: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
11: जी।

0: हेलो मैम,
1: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में। बता दीजिए। हेलो
0: मैम,
1: हाँ जी, गाना बता दीजिए।
0: ए मेहंदी का बूटे रंग अनोखे, नहीं है गाना तो हमको तुमसे प्यार है उसी में क्या है कि क्या पता गाना फिल्म में क्या है।
1: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे, यही वाला
0: जी मैम।
1: अच्छा जी, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
0: मैम सुनीता देवी हो जयपुर से।
1: अच्छा जी, तो आप कैसी हैं, ठीक है ना?
0: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत देर से कॉल की है।
0: दूसरा करते करते करते करते समय हो गया। अब तो देखे कि सोचे का कि टाइम तो माने पूजा करके खाना खा रहे थे तो अभी देखे कि अभी सोचे का कि ट्राई करे, अगर लग जाए तो बात हो जाएगा, नहीं तो ठीक है मैम।
1: और गाना जो बताई हूँ डेडिकेट भी करना चाहती हूँ।
0: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सनी भैया को, और सनी मैम जो मैम है, सनी की क्या नाम है पहले थी?
1: सोनी।
0: हाँ सोनी, अब नहीं आएंगी मैम?
1: अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारे
0: सही था। ये तो बात है, उनका मन का बात तो ही न जाने, मगर बहुत अच्छा उनका आवाज था। आप लोग का भी आवाज बहुत अच्छा है, मगर बहुत माने अच्छे से बात करती थी। अब आप लोग भी बात अच्छे से करते हैं, लोग माने गुस्साइएगा नहीं,
1: मतलब हम कहा लग पाएंगे। बात आप सही बोल रही है,
0: ऐसा ही बात है। तो आप सब बोलिए, घर परिवार सब कोई ठीक है ना मैम?
1: जी सब कोई ठीक है।
0: चलिए मेरा भी ठीक है।
1: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
0: मैम? और वाला तो दोनों गाना हम सुन रहे ही नहीं किए। गाना तो सुनते हैं छोटा वाला मोबाइल से, दिन भर सुनते हैं, 9 बजे रात को भी सुनते हैं, 9 बजे रात तक
1: जी,
0: नहीं सही 9:30 बजे सोनू भैया आते हैं। क्या पता वो आते हैं कि रिकॉर्डिंग बजाया जाता है, मगर ये नहीं पता है कि मैंने उरा को बोलते हैं कि मैं मैसेज करने के लिए, तो मैंने मैसेज लू करते हैं तो गाना बजता है
1: जी। तो आप उसमें फरमाइश की थी या फिर हेलो माय चॉइस की थी?
0: नहीं नहीं, आपसे तो की थी।
1: तो आप सुनती हैं ना?
0: जी मैम सुनते हैं
1: जी।
0: हो सकता है मैम कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो चार्ज में लगा देते हैं, तो हो सकता है बजा दे होंगी।
1: जी मैं गाना सबका बजाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो गाना तो सबका बजेगा ही।
0: जी मैम मेरा नहीं ही गलती होगा।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनीता जी प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
11: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो,
13: नमस्कार मैडम
12: जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: मैं किशोर बोल रहा हूँ, परसों से बात हुआ था। हाँ जी, आपको सुनाया था हमारा मनपसंद गाना, कल बहुत अच्छा लगा था।
12: अच्छा जी, सुने अपना गाना?
13: हाँ जी सुने थे, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। एक चीज आए थे मैडम, प्रचार बहुत लंबा कर दिए आप लोग, थोड़ा कम करिए
12: जी,
13: प्रचार थोड़ा कम करिए, ज्यादा लंबा हो रहा है।
12: अच्छा,
13: आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप हेलो फरमाइश भी चालू करिए।
12: जी जी, बहुत जल्द होगी, चालू
13: गाना सुना दीजिएगा।
12: मैं गाना आपको सुनाऊंगी, बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
13: हम बोल रहे हैं राजस्थान।
12: और आपका नाम?
13: जय किशोर।
12: अच्छा जय किशोर, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
13: दीदी आशी का गाना सुना दीजिएगा, बलमुआ आजा जल्दी आजा।
12: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
13: कि आपको पहले सुनने वाले सब।
12: ओके जी, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: मुझे किस सुनना है?
1: जी सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
0: मेरा नाम उमा शंकर सिंह है।
1: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, तो क्या है आज की फरमाइश?
0: फरमाइश है ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो।
1: और ये डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: हाँ, आप सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, और रानी हरकुआ को भी डेडिकेट रहेगा, बाकी हमारे उत्तम सोनी है, दिलीप भाई है, कामरान भाई है, कामरान भाई सब सुन नहीं जाए।
1: चलिए, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है, ओके।
2: ये पर

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम।
10: कैसे बन गई?
9: हम तो बिल्कुल बढ़िया वानी, अपन बताएं। क्या होता
10: क्या होता
9: क्या हुई रोगा से बात होता?
10: हम इंतजार करते हैं, बात कर ली रात जाए खाना न बनाए।
9: चलिए, कार्यक्रम से बहुत लगाव हो गया ना।
10: जी मैडम जी, टाइम हो जाला तो सोचे नहीं, पहले बतिया ली तब कम कर दे।
9: चलिए ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे नाम
10: बात कर दे से आदत हो गई, बाकी काम 10 मिनट बाद हुई थी फोन पहले।
9: चलिए
10: ऐसे भी आज थोड़ी बतिया रहे हमको, कम 2-10 बार बात मैंने बोला रही है
9: ना। ना वैसे बताइए तो रोग से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके भी।
10: जब बात हो जाए रोग से तो मानी क्यों चला बात बन गए, फिर जितने लेट हो रहा था बात हुई थी।
9: अच्छा अच्छा जी ठीक, वैसे नाम बता दिया अपन।
10: रेशमा बोलते पठानपट्टी से।
9: अच्छा, तो घर पर ना ना नहीं की बुलाई, तारी बताई घर परिवार में सब कुछ ठीक था?
10: हाँ मैडम सब कुछ ठीक, अपन कहीं
9: जी जी सब ठीक। ठीक है।
11: दादा वर्षा तो ठीक है?
9: सब तो ठीक है।
11: नाश्ता सफा पानी?
9: हाँ नाश्ता बढ़िया।
11: आज के फरमाइश ये बा हिंदी गाना सुनने के बाद ज्यादा तो याद नहीं है, रोक बता देते नहीं अब समझ में आ जाते ही बजा दे। हिंदी गाना नहीं क्या? चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता।
9: कौन सा?
11: चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता। बाय गाना।
9: हाँ
11: हाँ बा तो वह बजा दे ज्यादा हमारा कोई याद नहीं है तो याद रहा तो तुम बता।
9: चलिए कोई बात नहीं की ये बजा दे मगर ना मिली तो कौन और बजा सकते नहीं।
11: हाँ ना मिल तो
9: आप सुनवाई के भी चाहते नहीं?
11: हाँ तो रौरा सुने मैम लोग बोले में सब कुछ जितना लोग सुनते सब कुछ सुन ले करे।
9: चलिए तो फिर प्ले करते हैं और गाना
11: जी
9: सुनाते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4
12: Thank you.

0: हेलो
1: हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम में। जी नाम बता दीजिए अपना।
0: हमारा नाम है बद्रू नारायण मुनि।
1: और कहाँ से?
0: ग्राम भलू से, जिला सिवान, जामो बाजार।
1: अच्छा, तो कैसन बनी हुआ?
0: ठीक बनी। जय भवानी।
1: जय भवानी। बता दीजिए आज की फरमाइश।
0: आज के फरमाइश बा तोरा मन दर्पण कहलाए। काजल फिल्म का गाना है
1: जी।
0: ये काजल फिल्म का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये भजन है।
1: अच्छा,
0: ये भजन है और इसको रवि साहब ने संगीत दिया है, लिखा है साहिल लुधियानी साहब।
1: ठीक है, और गाना सुनाए।
0: गाना तो सुनवाएंगे सब, आपको भी और रेडियो रिंजिम के पूरे परिवार को भी, और पूरे सिवान जहाँ तक ये हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी जितने श्रोता है सबको।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है जी।
1: जी
0: आपका सुनने को मिलेगा
1: आज नहीं तो कल। बनी
0: ठीक है जी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करे 87894-18744।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: Now pick your phone up.
17: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बहुत बहुत रेडियो 90.4 एफएम मैम, कैसी हैं मैम? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप? और आपका नाम? तृप्ति जी, तो कैसी हैं आप?
19: बताइए भारती मैम कैसी हैं?
18: भारती मैम भी अच्छी हैं।
19: आप नहीं
18: आई हैं?
19: नहीं, चल रहा है ऐसा नहीं लग रहा है।
18: जी जी, अभी बहुत जल्द चलेगा।
19: और सब बताइए?
18: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए? खाना हो गया आपका? जी, तो क्या है आज की
19: फरमाइश?
18: कौन सा
19: बता रहे हो?
18: हमारा पीछे ये गाना तो बहुत अच्छा
19: है।
18: जी वेलकम। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
19: जी आपको,
18: ओके तृप्ति जी, तो फिर मैं प्ले करती हूँ गाना आपका।
19: जी थैंक यू मैम।
18: जी वेलकम। तेरी सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी क्या हाल चाल है जी आपका?
0: बस मैडम जी, दुकान पर बैठे सिलाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
0: बारिश वारिश नहीं हो रहा है, पानी गया चला गया अब तो वापस।
1: अच्छा
0: जी,
1: बढ़िया। तो खाना वाना हो गया है आपका?
0: जी हो गया, दाल बाटी बनाई थी आज। आइए भोजन कर लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल आएंगे।
0: ये कौन, भारती जी बोल रही है क्या?
1: नहीं।
0: सोनी जी?
1: नहीं।
0: मनोरमा जी?
1: हाँ जी।
0: जी तो मैडम जी, मेरी पिक्चर का नाम तो पता नहीं लेकिन अल्ताफ राजा का गाना है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
1: थोड़े इंतजार का मजा लीजिए,
0: अल्ताफ राजा ने गाया है ये। इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अल्ताफ राजा का है ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये गाना आप तीनों मैडमों को डेडिकेट रहेगा, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, और जितने भी सभी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: कब बजेगा ये?
1: शाम को।
0: जी मैडम धन्यवाद।
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello.
12: To dosto break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Main aap sabhi ko bata dun yadi aap sabhi is karyakram se judna chahte hain to pratyek sombar, budhvar aur shukrvar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 8029-94911. Ji haan, 8029-94911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 91.4 FM में। नमस्कार जी, सब ठीक बात बताएं?
14: काम कर रहे हैं।
13: अच्छा, अभी ठीक
14: बात।
13: गाना
14: सुना दीदी, आती से पहुँच गए गाना, दीदी आती फिल्म नहीं थे।
13: कौन गाना? गाना दो लाइन बता देती तो सही रही। एक बार गाना क्योंकि सुनाए के भी चाहता नहीं।
14: गाना तो बहुत लोग सुनने वाला।
13: अपना नाम बता
14: दे। हमारा नाम परमात्मा कुमार।
13: और कहाँ से?
14: कलामेटी में दूर था। अभी तो संजाम में है।
13: मौसम कैसा बनाने की?
14: मौसम है बारिश के हल्का हल्का भर गया होने गोपालगंज में।
13: गोपालगंज में भी ठीक था, कभी धूप होता कभी छाँव होता।
14: अच्छा होता बारिश तो अभी नहीं
13: चली तो फिर
14: आज बाजी काल
13: आज तो काल बाजी रही दोनों दिन में जी। तो प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 एफएम में।
0: महाराष्ट्र कुमार मालिक जी, महाराष्ट्र का वही जो कुमार
1: जी।
0: हाँ, गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आपका जो फिल्म है आजकल जी, मतलब गोरी हकरारिया का सुन रहा है।
1: कौन सा
0: गोरी हकरारिया? हरे हरी कुड़िया,
1: गोरी कलैया।
0: हाँ, गोरी कलैया आजकल जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्र को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ, दोस्त मित्र का ऐसा। ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जी 90.4 FM में। नमस्ते जी, नेहा जी कैसी हैं? जी जी, मैं तो ठीक हूँ, और नाश्ता पानी हो गया
14: है?
13: बढ़िया। तो क्या है आज की फरमाइश? कौन बात नहीं की, अरे सोच के बता दी, 2 मिनट में।
14: मैडम जी आवाज़
13: है, क्या बोल रही है एक बार और बताइए। तो
14: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा आता है। दिव्या मैडम जब आती है कॉल है
13: जी,
14: ऐसा ही आपका आवाज आता है, इसीलिए बोलते
13: हैं। चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं।
14: मेरा बहुत अच्छा अच्छा नहीं आता है।
13: नहीं नहीं, आपका भी आवाज अच्छा। तो फिर गाना याद आया आपको?
14: गाना याद सुना दीजिए,
13: साहिबा। अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
14: भाषी मैडम को
13: ओके। नेहा जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका। नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
0: जी मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। मैं स्कूटर
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: बोलते हैं मैम की गाना सुना कदा
1: बता दी।
0: तो जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, ये वाला गाना सुन।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं आप?
0: सबसे पहले आपको मैं जितने रेडियो रिंकिंग सुन रहे सभी सुन, और कमरान भाई उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी लेकर हैं गाना आपका।
0: अच्छा, कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 FM।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
9: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
8: अभी ठीक है, आप लोग दुआ से।
9: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
8: हम बोल रहे हैं ओम साई कलर्स, बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
9: चलिए, तो कैसे हैं आप?
8: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
9: जी, हम लोग भी बढ़िया है।
8: चलिए, बढ़िया के काम है
9: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
8: जी जी, नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं हूँ। आपका नाश्ता हुआ है?
9: हो गया। तो फिर क्या है
8: आपका नाम मैम?
9: जी, मेरा नाम मनोरमा।
8: मनोरमा, अच्छा, आज दूसरी बार बात हो रही है।
9: जी जी,
8: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
9: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
8: मैम, गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
9: चलिए कोई बात नहीं,
8: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
9: जी जी, बिल्कुल।

0: बस इतना ही
1: जी। इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
0: कहाँ इतना हम गा रहे हैं, आप लोग सब शोर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
1: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
0: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं। और जो गाना बताया वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंजन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए, आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, कारियावार नंबर 1 से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं
0: मनोरमा मैम
1: जी।
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: अच्छा जी, सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: ये सो चलता है।
1: जी जी
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मुझे से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: क्या गाके बता सकते?
0: गा के क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको
1: जी
0: और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रिंगल जहाँ से सुन रहे हैं सबको, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: ले सकती गाना आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: Now pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
3: Pick it up, pick it up.
4: Hello.
3: Now pick your phone up.
4: Hello.
5: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो।
8: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
7: जी अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम
7: जी, मैं हाजरा बात कर रही हूँ सूरत से।
8: जी कैसी हैं आप?
7: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
8: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
7: तो सुना है
8: जी,
7: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरे पुराना वाला सॉन्ग है ना, वही वाला।
8: आप दो लाइन गा के सुनाएंगी मुझे?
7: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
8: जी जी
7: वही गाना। दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
8: ओके तो सुना।

0: बस मैम जी, आपको बहुत अच्छा जा रही है जी। थैंक यू मैम। सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। जी जी क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल तो नहीं चल रहा
0: जी। आवाज में कट गया होता
1: और वो भी कट जाता है भाग जाता था और वो तो
0: कहता नहीं कट
1: जाना सुना दी
0: बता दी
1: तुम्हारा काम है तुम्हारा नाम
0: एक बार और बता दी
1: मेरे अंदर तुम्हारा काम है तुम्हारा नाम है
0: जी जी। और ये गाना सुनवाए के भी चाहता नहीं तो फिर प्ले करते हैं जब गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: एपिसोड नंबर 49।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

0: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: एपिसोड नंबर 50 50।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइन,
5: विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है।
6: आज जो AIM कांग्रेस कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज का दुबई में आयोजित हुआ था, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उसको लीड कर रहा था, मेरे साथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सचिव महोदय और डायरेक्टर भी थे, उनके साथ एक टीम थी। बहुत ही सकारात्मक चर्चाएं अनेकों ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हुई है। मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से हम लोग UAE के साथ एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल बेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे।
5: सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने वर्ष 2024 में प्रतिकूल मौसम के कारण खराब हुई फसल के लिए किसानों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि सहायता राशि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दी गई है।
7: बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 के मौसम के लिए जो नुकसान हुआ है वो लगभग 1,17,708 लाभुक किसानों को ये लाभ मिला है। लगभग 1,04,46,00,000 की राशि का भुगतान हम लोगों ने किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
5: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि वैशाली के लालगंज में निर्माणाधीन पुल के बीम लॉन्चर गिरने की घटना की जांच कराई जाएगी। भागलपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से आज पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में गरीब चौपाल यात्रा आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यात्रा के माध्यम से गरीबों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उसके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू है और आगे भी जारी रहेगी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं कही।
8: आरक्षण सबको समान मिला तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आगे बढ़ गए, कुछ लोग पीछे बढ़ गए? उन पर विचार करके कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पिछड़े हुए लोग फिर आगे आके उनको भी लाभ मिले, समानुपाती हो, सबको रेशनलाइज हो, सबको बराबर मिले, इसकी हम बात।
5: विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए जरूरी सुविधाओं की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मोबाइल ऐप आधारित सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके जरिए यात्रा और दैनिक भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अतिथि निवास जैसी सुविधाओं के लिए आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के लिए सभी जिला और अनुमंडल अदालतों में विशेष पीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने वाहन मालिकों से लंबित चालानों के निष्पादन के लिए लोक अदालत आने की अपील की है।
9: प्यारे बिहार वासियों, आगामी 12/9/26 को राष्ट्रीय लोक अदालत सभी जिलों में लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के 90 दिन से पूर्व के चालान हैं, उनकी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में होगी और इसके लिए 7 तारीख से 11 तारीख तक निबंधन हो रहा है और 12 तारीख को उन चालानों पर फैसला आएगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस योजना का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपने ही चला से मुक्ति पाने का काम करें।
5: प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर आज पटना में मुख्य सचिव प्रत्यामृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों के 87 प्रखंडों में 47 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1221 सामुदायिक रसोई केंद्र और 15 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 कंपनियों की तैनाती की गई है। इधर जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, बागमती और घाघरा समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि अधिकांश स्थानों पर जलस्तर में गिरावट का रुख है। गंगा नदी भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से 1.66 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 1.78 मीटर और कोसी का जलस्तर कुर्सेला में 1.49 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। पुनपुन का जलस्तर भी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1.41 मीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद और घाघरा का जलस्तर दरौली में बढ़ रहा है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। औरंगाबाद के ओबड़ा में सबसे अधिक 123.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 12 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: गया जी में 25 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि इस बार मेले में सुरक्षा को लेकर तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए 25 रुपए में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं के आवासन के लिए गांधी मैदान में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है।
2: इस वर्ष पितृपक्ष के लिए 21 कोषांगों का गठन किया गया है। लगभग 70,000 लोगों की आवासन क्षमता हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें गांधी मैदान में 2500 बेड की टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है। साफ सफाई के लिए 5 जोन और 54 सेक्टर में पूरे नगर क्षेत्र को विभाजित किया गया है। प्रकाश व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में हम लोग स्ट्रीट लाइट, हाई मास लाइट, मिनी हाई मास लाइट, रोप लाइट के माध्यम से कार्य करा रहे हैं। जलापूर्ति के लिए 280 चापाकल, 54 प्याऊ और 890 नल, 22 वाटर टैंकर और 2 वाटर ATM मेला क्षेत्र में लगातार नियुक्त रहेंगे। स्वच्छता के लिए 364 शौचालय, 579 प्री फैब्रिकेटेड जो टेम्पररी शौचालय होते हैं और 134 स्नानागार और 74 चेंजिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं।
0: विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आज लघु जल संसाधन विभाग के छपरांचल के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के पटना, मसौढ़ी, गया, छपरा और मुंबई में 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधीक्षण अभियंता पर आय से 100% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बैंक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज हड़ताल किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हुई इस हड़ताल में राज्य भर में व्यापक असर देखने को मिला। बैंकिंग सेवाओं के बाधित होने के चलते हजारों करोड़ रुपए का लेनदेन प्रभावित हुआ। भागलपुर जिले के बाबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भाजपा के नेता बताए जाते हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड स्थित पूर्वी मुरादपुर में डूबने की घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक डंपर ट्रक से 3,000 लीटर से अधिक शराब जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाकों और जंगलों में एसएसपी और पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। वैशाली जिले के भगवानपुर से पुलिस ने 72 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के फतेहपुर में चोरी के एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। शेखपुरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई। पूर्णिया जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बगहा की एक अदालत ने चर्चित विजय सहनी हत्याकांड मामले में दोषी अशोक यादव को उम्र कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में पहले ही 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स समिट के वेलकम किट में शामिल हुआ बिहार का सत्तू और मखाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के उत्पादों को मिल रही है वैश्विक पहचान। सम्राट चौधरी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 20 नवंबर को राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों को दिया जाएगा बांस की पर्चा। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और प्रदेश में कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का दायरा बढ़ा। 15 जिलों की 47 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: लड़कियों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
3: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
2: आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
2: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
3: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
2: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
3: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
3: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
2: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
3: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
2: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
3: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
2: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
3: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
2: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
3: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
2: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
3: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे, और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
3: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
2: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
3: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
3: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस

0: के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
1: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था। ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: आकाशवाणी के समाचार से।

0: युवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न CPSE और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स व उभरते ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति वाली विविध और एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। इंडियन ऑयल अपने आगामी पॉली ब्यूटाडाइन रबर प्लांट और PBR बिजनेस मार्केटिंग ग्रुप में इन पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। उत्पादन प्रबंधक, वरिष्ठ उत्पादन प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधक PBR मार्केटिंग। इच्छुक प्रत्याशी विज्ञापन और अन्य अपडेट के लिए देख सकते हैं 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अपर डिवीजन क्लर्क UDC एक रिक्ति तथा अकाउंटेंट लेखाकार दो रिक्तियां। विस्तृत दिशा निर्देश, विज्ञापन, पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों तथा निर्धारित आवेदन प्रपत्र की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rdsdehariana.dgt.gov.in। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कार्यकाल आधारित ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, इस पद के लिए यदि आप जानकारी चाहते हैं शैक्षिक योग्यता के विषय में तो ध्यान दीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक BE, BTEC अथवा डिप्लोमा धारक होना चाहिए। केमिस्ट्री को मुख्य विषयों में से एक के तौर पर लेकर BSc स्नातक यदि है उम्मीदवार तो वे भी आवेदन कर सकते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया की सूचनाओं के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट munitionsindia.in तथा ddpdoo.gov.in। सैनिक स्कूल बीजापुर में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। PGT केमिस्ट्री, PGT अंग्रेजी, TGT अंग्रेजी, TGT जीव विज्ञान, TGT गणित, TGT कन्नड़, TGT भौतिक विज्ञान, TGT सामाजिक विज्ञान, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट तथा सामान्य कर्मचारी MTS। शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक नियमों, शर्तों, आरक्षण, तैनाती के स्थान और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ssbj.in। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वैज्ञानिक रिक्तियों की संख्या 99, वैज्ञानिक अभियंता SC रिक्तियों की संख्या 52, वैज्ञानिक अभियंता कंप्यूटर विज्ञान रिक्तियों की संख्या 21, वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी एक रिक्ति, वैज्ञानिक अभियंता PRL एक रिक्ति तथा वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिकी PRL एक रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए देखिए कृपया इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम
8: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
9: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
9: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
8: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
9: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
8: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे।

0: एक रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया।

0: 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरै तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, 20 सूत्री की बैठक में भोरे तथा थामे को नगर पंचायत बनाने पर बनी सहमति। अस्पताल में गंदगी पर जिलाधिकारी सख्त, परिसर की कराई गई सफाई। सारण नहर पर बनी सड़क का होगा मरम्मत। बंजारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारी गोली, स्थिति गंभीर। हथुआ के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से मनाया गया छठियार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज प्रदेश के कृषि मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तमाम 20 सूत्री के सदस्यों सहित 20 सूत्री की बैठक की। इस दौरान बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति और पूर्व के बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन तथा लंबित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार, गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू और विधान परिषद के सदस्य जनक राम, बिहार विधानसभा के सदस्य राम सेवक सिंह, मंजीत कुमार सिंह और बीसूत्री समिति के उपाध्यक्ष संदीप गिरी एवं आदित्य शंकर शाही तथा जिला पदाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी सहित बीस सूत्री के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान बैठक शुरू हुई, जिसमें थावे और भोरे प्रखंड की चार चार पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सहमति भी व्यक्त की गई। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवेदनों का ससमय, गुणवत्तापूर्ण और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विजयपुर के कनीय अभियंता के स्तर पर कर्तव्यहीनता और लापरवाही के मामले को गंभीरता से लिया गया। प्रभारी मंत्री ने संबंधित पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सदर अस्पताल में गंदगी और जल जमाव की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद एवं अस्पताल प्रबंधन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और मरीजों तथा उनके परिजनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। नगर परिषद के तरफ से सदर अस्पताल परिसर की आज सफाई भी कराई गई। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए अस्पताल परिसर को साफ करवाया। जल जमाव की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। जल जमाव और गंदगी को फिलहाल मशीन लगाकर साफ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल परिसर में और शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण साफ सफाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। व्यापक प्रचार प्रसार कराने और अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान DCLR सदर और हथुआ को राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों की रोस्टर वार सूची 20 सूत्री समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को भी कहा गया। सारण मुख्य नहर, जो 52 किलोमीटर सेवा पथ के रूप में जाना जाता है, इसके मरम्मत को लेकर प्राकलन तैयार किया गया। जर्जर सड़क से आवागमन में परेशानी हो रही थी, अब इसकी स्वीकृति मिलते ही इस पर मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्य नहर के सेवा पथ पर निर्मित कालीकृत सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए अब इसकी मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुखदेव पट्टी से भीखमपुर तक निर्मित कालीकृत सड़क की मरम्मत के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ पर सुमन हॉस्पिटल के पास आज एक व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली मार कर अपराधी फरार हो गए। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल युवक गोपालगंज नगर थाना के कुकुरभूका गाँव के 40 वर्षीय शैलेश यादव बताए जा रहे हैं, जो नागेंद्र यादव के पुत्र हैं। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। उनके गर्दन के पास गोली लगी है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से परिजनों में परेशानी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक टीम का गठन किया गया है और जगह जगह CCTV कैमरे तथा आवश्यक जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना का कारण अब तक पता नहीं चला है और इसमें कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का छठिहार हथुआ के गोपाल मंदिर में पूरे धूमधाम से मनाया गया। प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोपाल मंदिर प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना छठिहार इत्यादि का आयोजन करता है। यहाँ हथुआ राज परिवार के तरफ से कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष भी हथुआ राज परिवार के ही नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण का छठिहार पूरे धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहे, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। पुलिस के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा की। लोग पूरे विधि विधान से पूरे रात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे थे। बहुत दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने इस उत्सव में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी गोपाल मंदिर के नाम से ही गोपालगंज का नाम गोपालगंज पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही गोपालगंज का नाम कालांतर में हथुआ राज परिवार की तरफ से रखा गया था और तब से और गोपाल मंदिर की स्थापना से ही प्रत्येक वर्ष राज परिवार की तरफ से भगवान श्री कृष्ण का छठिहार और जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। आज जिला नागरिक परिषद की भी एक उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सरकार के कृषि मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने की। इस दौरान नागरिक परिषद के संकल्पों, उद्देश्यों, दायित्वों एवं आपदा प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि देश और राज्य की राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखना तथा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखना परिषद का मूल संकल्प है। उन्होंने कहा कि मानव जनित अथवा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पारस्परिक सहयोग के बल पर ही राज्य के जनजीवन को सुरक्षा प्रदान करना ही जिला नागरिक परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। परिषद के दायित्वों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इस परिषद के माध्यम से उग्रवादी, आतंकवादी और विघटनकारी शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के लिए जनमत तैयार करना है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन नीति के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में आम जनता का सक्रिय सहयोग प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इस बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में आपदा मित्र, NCC, NSS, कैडेट्स, स्काउट और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क तैयार किया गया है, जो किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या आपदा के समय तत्पर रहता है। नागरिकों के बचाव हेतु पूर्व में भी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया है और आगे भी लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से ऐसे वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त चंदन यादव उर्फ बटलू यादव पिता सुरेंद्र यादव साकिन रानीपुर थाना कटिया जिला गोपालगंज को मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कटिया विकास स्कूल के पास वाहन जाँच के दौरान शराब पकड़ी गई थी। इस मामले में आरोपी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया था। तब से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने गंडक नदी से एक नाव पर भारी मात्रा में शराब पकड़ी। बताया जा रहा है कि 288 लीटर से अधिक देशी शराब है। नाव तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस के जाने से पहले नाव से कूदकर तस्कर फरार हो गए, जिसके वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। नाव तथा शराब को जब्त किया गया है। कटिया पुलिस ने शराब तस्करी के ही मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त छोटू शाह को भी गिरफ्तार किया। यह कटिया के कोइसा खुर्द निवासी विद्या शाह का पुत्र है। बताया जा रहा है कि कटिया के 12 चाप स्कूल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस वाहन की जांच कर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के तरफ से मोटरसाइकिल पर शराब लेकर दो लोग आ रहे थे, जिसमें पुलिस वाहन को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर ये लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने पीछा करते हुए पकड़ने का प्रयास किया पर दोनों मौके से फरार हो गए। दोनों की पहचान कर ली गई और इसी मामले में एक आरोपी छोटू शाह पिता विद्या शाह साकिन कोइसा खुर्द को आज गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को सार्वजनिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और इसी उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर अभियान के रूप में मनाने की योजना बनाई है। 17 सितंबर को पूरे देश भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। आज इसको लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को जगह जगह सार्वजनिक रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा और दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जनता के तरफ से आशीर्वाद दिया जाएगा। जनता से भी उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग 17 सितंबर को सार्वजनिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दें। उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की है और लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए कई बेहतर निर्णय लिए हैं। इस वजह से आज देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जनता से उन्होंने अपील की कि सभी लोग 17 सितंबर को 7 बजे अपने घरों पर दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दें। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा,
14: सेवा के 25 वर्ष देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रव्यापी आशीर्वाद का दिया अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान का संदेश है, जिसने जीवन संवारा उसे आशीर्वाद हमारा। जिन्होंने देश को संवारा, देश का सम्मान बढ़ाया, भारत के मान और मां भारती के संतानों का स्वाभिमान को जिसने बढ़ाया जगाया, एक राष्ट्र सबल राष्ट्र का भाव जिन लोगों ने हर भारतीयों के मन में प्रतिस्थापित किए, अनुच्छेद 370 धारा हटाने से लेकर राम मंदिर बनाने का, विरासत और विकास के भाव जगाने का, डिजिटल इंडिया का अभियान नौजवानों के मन के अंदर दुनिया को मुट्ठी में करने का एक माहौल जिसने बनाया, स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ भारत का वातावरण जिसने बनाया, जीएसटी लागू कर करके देश को आर्थिक रूप से मजबूती और सबलता प्रदान किए, जनधन योजना से करप्शन मुक्त भारत का संकल्प को साकार जिसने किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान 21वीं सदी के भारत विकसित भारत का जिस सोच को जमीन पर उतारा, किसान सम्मान निधि से लेके महामारी तक में भी पूरे देश की एकजुटता का जिसने भाव जगाया, जिसने देश को संभारा, आज हर माँ भारती के संतानों का आशीर्वाद उनके साथ है। ये भाव का प्रकटीकरण हम लोगों का राष्ट्रीय अभियान में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी, देश भर में बिहार के अंदर भी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग की भागीदारी इसमें होगा। गांव-गांव और घर घर तक प्रधानमंत्री जी के जनता का आशीर्वाद और स्नेह पहुंचेगा। देश के प्रधानमंत्री जी जो काम किए घर घर तक, उस काम के निकट हमारा दीप प्रज्वलित, कार्यकर्ता ही नहीं जो देश को गौरवान्वित और विकसित भारत का योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, वो सब चाहे जन वितरण दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सबके मन के अंदर एक नया उत्साह है। संगठन के जिला से लेकर के मंडल बूथ स्तर तक एनजीओ कोऑपरेटिव संस्था के साथ मिलकर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का है। आज हमारा दीप प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनियों में जलेगा सामूहिक रूप से, अमृत सरोवर पर, नवनिर्मित सेतु बांध इंफ्रास्ट्रक्चर, जन औषधि केंद्र पर, आज आयुष्मान अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, मंदिर से घाट, पंचायत भवन जो प्रमुख स्थान है उन पर दीप प्रज्वलित होगा। 17 सितंबर को 7 बजे शाम को पूरे बिहार में एक साथ दीप प्रज्वलित होगा। घर घर व्यक्तिगत दीप प्रज्वलन के साथ चयनित स्थानों पर सामूहिक दीप प्रज्वलित करने का, फोटो वीडियो सेल्फी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को जोड़ने का भी हमने आग्रह आह्वान किया। अभियान के डिजिटल प्रचार में सब लोगों से आशीर्वाद का दिया।
13: मीरगंज लाइन बाजार मुख्य पथ पर साहिबा चक गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने एक छात्रा को कुचल दिया जिससे छात्रा की मौके पर मौत हो गई। मृत छात्रा मुस्कान कुमारी बताई जा रही है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, बहुत सारे लोग घटना स्थल पर जुट गए। कई घंटों तक आवागमन भी बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद छात्रा के परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
15: 20 सूत्री की बैठक में भोरे तथा थावे को नगर पंचायत बनाने पर बनी सहमति। अस्पताल में गंदगी पर जिलाधिकारी सख्त, परिसर की कराई गई सफाई। सारण नहर पर बनी सड़क का होगा मरम्मत। बंजारी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारी गोली, स्थिति गंभीर। हथुआ के गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का धूमधाम से मनाया गया छठियार।
13: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH-27 गोपालगंज।
20: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
21: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
22: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
23: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
21: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
25: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
26: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
20: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
19: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
20: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:32 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, इतनी सारी बातें बतानी है और आप ये सारी बातें टाइप करके हमारे पास भेजते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय सुनो भैया जी नमस्कार, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड इवनिंग बोलिएगा। हम अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से गाना सुनना है तुमसे मिलने को दिल। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्री करेंगे और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सन्नी पटेल शौंग। तो बिल्कुल आपका स्वागत है सन्नी जी, आपकी फरमाइश हमें याद है कि पूरी कर चुके हैं इस सप्ताह, सो आज नहीं प्ले होगा और फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सर नमस्कार, मैं रजेश प्रजापति जौनपुर से, और सर एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं आप सर, श्रेया एंड मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से। तो बिल्कुल बढ़िया, आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, हेलो भाई कैसे हैं, ठीक हैं, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक हैं, सुपर गाना भाई। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सविता चौहान भूछपरा से जुड़ी हैं, बने रहे हमारे साथ, कार्यक्रम एंजॉय करते रहें और आगे बढ़ते हैं। पहले गाने के फरमाइश हम कृष्ण मोहन जी के गाने के पूरे करते हैं और इन्हीं के गाने के साथ एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पर।

फ्रीडम छे 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश पूरी की जा सके। आगे मैसेज कुछ पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम बता दें प्ले होगी। राजेश जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से भेजे हुए हैं मैसेज और गाने के बोल देते हैं, बीत गए जो लम्हे लौट के ना आएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आगे कुछ मैसेज देखा जाए। लिखा गया है कि मैं वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दूँ, मैं वो नहीं जो तुम्हें ना तुझसे नाता तोड़ दूँ, मैं वो हूँ जो तेरी सांस से रुके तो अपनी सांस से छोड़ दूँ। सोना भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार। हम भी जुड़ गए हैं दिलेवराम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, हेलो सोनू भैया, हम हसनपुर से संदीप कुमार, गायत्री देवी, प्रशांत कुमार जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप सभी बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूं। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बुलेट चौधरी भड़रिया थाना तिनफेड़िया से जुड़े हैं, गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा और हमें लगता है कि आपकी फरमाइश इस सप्ताह पूरी किए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मस्त सुपर सॉन्ग मैसेज करती हैं श्रेया मनीषा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि भैया जी यह गाना नहीं है, मैसेज पूरा पड़े होते, यह एल्बम का गाना है और हमने ढूंढा लेकिन नहीं मिलने की वजह से ही आपको इस गाने को सुनाए। और हमें भी लगता है कि कुछ आप बीच में से भी गाने के नाम बताए हुए थे जिसके कारण हमें नहीं मिल रहा था। और कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद, आगे से कोशिश करेंगे हम भी। और आपसे भी निवेदन करेंगे आप सभी से कि जो भी गाने सुनने हैं उसका मुख्य नाम बताएंगे लो, तो जो गाने के फरमाइश करेंगे लो उसी गाने को प्ले किया जाएगा। बीच में से नाम बताने से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अर्ज किया है कि हाल कैसा है, मिजाज कैसा है, कल तो कल था बताओ आज कैसा है, हमारे शहर में जो लोग मोहब्बत के दुश्मन, तुम बताओ तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है। सुन भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं, राजेश जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96 और मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, ये तीन बातें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। जैसे मैसेज हमारे पास पहुँचेगा वैसे आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे कुछ ही समय में और आप सुन पाएंगे। तो आप फरमाना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो आप बिल्कुल फरमाएं। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश पूरी करेंगे हम सन्नी पटेल जी की। और कह रहे हैं कि उस दिन मेरा गाना आप नहीं प्ले किए, आपने पूछा कि लिंक चाहिए और हम लिंक दिए, तब तक कार्यक्रम की समाप्ति हो चुकी थी, तो आज मेरा सुना दीजिए। बिल्कुल, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। हमने भी चेक किया और इन्होंने गाने के फरमाइश किए हुए हैं, तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और, प्लीज़। तो चलिए आप एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
0: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
6: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद में आप सभी का स्वागत है रेडियो 98.4 FM पे सुचल में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज लिखा गया है कि वाओ माय फेवरेट सॉन्ग लजवाब, और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती ओझवालिया से, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लाइन पहुँचाए हुए हैं और लिखा गया है, लिख ले रहे कि दुनिया में सब कुछ पैसे होला का, जैसे कर तरु प्यार वैसे होला का, तू और तू निभा ना सकेलू तो वादा का करबू, और तू निभा ना सकेलू तो वादा का करबू, हमके छोड़ देबू ऐसे ज़्यादा का करबू। और इस लाइन को भेजे हुए हैं बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया कि थैंक यू सॉन्ग प्ले करने के लिए प्लस गुनगुनाने के लिए, चलिए आपको भी धन्यवाद है सनी जी, रेडियो रमछम सुनने के लिए आगे भी बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि नाइस गाना, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, स्वागत है आपका भी। और आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ऐसी बात है आप बहुत अच्छा गाते हैं, कोशिश की जाती है, अच्छा तो नहीं होता है, प्रयास जारी है, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में तृप्ति। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं सुरेश जी, गाने का बोल देते हैं दिल में तुझे बिठाकर। कर लूंगी बंदे में आंखें।
7: सारेगामा डॉट

फ्रीडम एमसीएम 95.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैसेज शामिल नहीं होता है, भेजने से क्या फ़ायदा। और इस मैसेज को पहुँचाए हुए हैं मिथुन शर्मा जी बेंगलुरु से, और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप जब भी मैसेज करें तो जब कार्यक्रम स्टार्ट हो या कार्यक्रम स्टार्ट होने से 1-2-3 मिनट पहले मैसेज करें तो आपकी मैसेज बिल्कुल शामिल होगी। अब आप 10 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट पहले मैसेज किए रहेंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा और हम शामिल नहीं कर पाएंगे। अगर मिलेगा भी तो हमें लगेगा कि आप सुन नहीं रहे होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैसेज हमारे पास बहुत सारे आए हुए रहते हैं दिन में भी, तो जो तत्काल के मैसेज होते हैं उन्हीं मैसेज को शामिल किया जाता है और उन्हीं मैसेजों के साथ कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो अपने मैसेज को सुने, अपने गाने जो फरमाए हुए हैं उस गाने के साथ एंजॉय करें। तो आप जब भी मैसेज करें, कार्यक्रम स्टार्ट हो तो मैसेज करें, आपकी मैसेज बिल्कुल शामिल की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आगे मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग श्रेया एंड मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से की है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। तो अभी गाने के नाम नहीं बताइए, तो बिल्कुल बताएं, आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं अजय प्रसाद कुशवाहा जी ग्राम बिलवा से। और चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है अखियों के झड़ोखों से। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछिम 94.4 एफएम पे।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुन रहे आप सुबह और सोशल लेस में फरमाइश का, और यहाँ पे समाप्ति का भी समय हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं, अब फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है। सो अंतिम गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और अंतिम गाने प्ले करते हैं निशा पांडे की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, बातों ही बातों में तेरा नाम लेते हैं। तो एंजॉय करते हैं हम सभी अंतिम गाने के साथ। फिलहाल आप सब सुने और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहे रेडियो एमजीएम 94 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिगी समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो
4: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 एफएम में। धूप तो निकला हुआ है, अभी धूप का छाऊं
1: बोले कि तू रूपवा के की कहा भाई रूपिया के केन जी, ये गाना है भोजपुरी है मैम
0: जी,
1: बढ़िया गाना है, बढ़िया ही गाना है, खराब खराब नहीं है
0: जी। हाँ ये गाना जो
1: आप बजा के ठीक कीजिए तो फरमाइश कीजिए।
0: नहीं नहीं गाना सुने हैं, गाना तो बहुत अच्छा है
1: जी। पवन आशीष पवन जीत
0: के जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: जी। जी नमस्ते
0: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिम 90.4 एफएम
1: जी।

0: हेलो
1: मैम,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में। बता दीजिए। हेलो, हाँ जी, गाना बता दीजिए।
1: ये मेहंदी का बूटे रंग अनोखे नहीं है गाना, तो हमको तुमसे प्यार है उसी में कहा है कि क्या पता का फिल्म में क्या है।
0: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे, यही वाला
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम सुनीता देवी हो जयपुर से।
0: अच्छा जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना
1: जी मैम? ठीक है, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत।

0: फिर से कॉल किया
1: मैम। करते करते करते करते समय हो गया। अब तो देखे कि सोचे का कि टाइम तो माने पूजा करके खाना खा रहे थे तो अभी देखे कि अभी सोचे का कि ट्राई करे अगर लग जाए तो बात हो जाएगा नहीं तो ठीक है मैम।
0: और गाना जो बताई हूँ डेडिकेट भी करना चाहती हूँ
1: जी मैम आपको, भारती मैम को, सनी भैया को। और सनी मैम जो मैम है सनी की क्या नाम है पहले थी
0: सोनी।
1: हाँ सोनी ओ अब नहीं आएंगी मैम।
0: अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारा
1: ही ये तो बात है उनका मन का बात तो ही न जाने। मगर बहुत अच्छा उनका आवाज था, आप लोग का भी आवाज बहुत अच्छा है मगर बहुत माने अच्छे से बात करती थी। अब आप लोग भी बात अच्छे से करते हैं लोग माने गुस्साइएगा नहीं
0: मतलब हम क्या लग पाएंगे। बात आप सही बोल रही हैं।
1: ऐसा ही बात है तब आप सब बोलिए घर परिवार सब कोई ठीक है ना मैम।
0: जी सब कोई ठीक है।
1: चलिए मेरा भी ठीक है।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: मैम। और वाला तो दोनों गाना हम सुनते ही नहीं किए। गाना तो सुनते हैं छोटा वाला मोबाइल से दिन भर सुनते हैं, 9 बजे रात को भी सुनते हैं 9 बजे रात तक। नहीं 9:30 बजे सोनू भैया आते हैं क्या पता वो आते हैं कि रिकॉर्डिंग बजाया जाता है मगर ये नहीं पता है कि मैंने उरा को बोलते हैं कि मैं मैसेज करने के लिए तो मैंने मैसेज लू करते हैं तो गाना बजता है।
0: तो आप उसने फरमाइश की थी या फिर हेलो माय चॉइस में की थी?
1: नहीं आपसे तो की थी
0: तो आप सुनती है ना?
1: जी मैम सुनते हैं
0: जी।
1: हो सकता है मैम कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो चार्ज में लगा देते हैं तो हो सकता है बजा दी होंगी।
0: जी मैं गाना सबका बजाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो गाना तो सबका बजेगा ही।
1: जी मैम मेरा नहीं ही गलती होगा।
0: चलिए कोई बात नहीं तो सुनीता जी प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जय किशोर बोल रहा हूँ, परसों से बात हुआ था। हाँ जी, आपको सुनाया था हमारा मनपसंद गाना, कल बहुत अच्छा लगा था।
6: अच्छा जी, सुने आपने गाना?
7: हाँ जी सुने थे, बहुत बढ़िया आपने सुना। एक शिकायत है मैडम, प्रचार बहुत लंबा कर दिए आप लोग, थोड़ा कम करिए
6: जी।
7: प्रचार थोड़ा कम करिए, ज्यादा लंबा हो रहा है।
6: अच्छा,
7: आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप हेलो फरमाइश भी चालू करिए।
6: जी जी, बहुत जल्द होगी चालू।
7: गाना सुना दीजिए।
6: मैं गाना आपको सुनवाऊंगी, बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
7: हम बोल रहे हैं राजस्थान।
6: और आपका नाम?
7: जय किशोर।
6: अच्छा जय किशोर, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
7: दीदी आशी का गाना सुना दीजिएगा, बलमुआ आजा जल्दी आजा।
6: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
7: कि आपको पहले सुनने वाले सब।
6: ओके जी, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: मुझे किस सुनना है?
0: जी सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
1: मेरा नाम उमा शंकर सिंह है।
0: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
0: अच्छा जी, तो क्या है आज की फरमाइश?
1: फरमाइश है ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो।
0: और ये डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: हाँ, आप सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, और रानी हरकुआ को भी डेडिकेट रहेगा, बाकी हमारे उत्तम सोनी है, दिलीप भाई है, कामरान भाई हैं, कामरान भाई सब सुन ले जाए।
0: चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है, ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
6: FM में।
5: हम तो बिल्कुल बढ़िया वानी, अपन बताए।
6: बढ़िया
5: क्या होता
6: क्या होता
5: क्या हुई रोज से बात होता।
6: हम इंतजार करती बात कॉली आज जाए खाना न बनाए।
5: चलिए, कार्यक्रम से बहुत लगाव हो गया ना।
6: जी मैडम जी, टाइम हो जाला तो सोचे नहीं पहले बतिया ली तब कमा कर दे।
5: चलिए ठीक है, कुछ नहीं ऐसे नाम बता
6: दिया। बात करते वालों से आदत हो गई है, बाकी काम 10 मिनट बाद हुई लेकिन फोन पहले।
5: बिल्कुल, चलिए
6: ऐसे भी आज थोड़ी बतिया रहे हमको, कम 2012 से बात मैंने बोला रही है
5: ना। ना वैसे बताइए तो रोज से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके भी।
6: जब बात हो जाए रोज से तो मानी लेट हो
5: रहा नाम बता दिया अपन।
6: रेशमा बोलते पठान पट्टी से।
5: अच्छा, तब घर पर नहीं बुलाई तारी बताई। घर परिवार में सब कुछ ठीक था।
6: हाँ मैडम जी, सब कुछ ठीक। अपन कहें
5: जी जी भी सब ठीक है।
6: सब कुछ ठीक है,
5: सब कुछ ठीक है।
6: नाश्ता सोफा कहीं?
5: हाँ नाश्ता बोलिए। सही तो क्या
6: आज के फरमाइश ये बा, हिंदी गाना सुने के बाद ज्यादा तो याद नहीं है, रोक बता देते नहीं अब समझ में आ जाते ही बजा दे। हिंदी गाना नहीं क्या? चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता।
5: कौन सा?
6: चताना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता। बाबा गाना तो उन्हें बजा दें, ज्यादा हमारा कोई याद नहीं किया, कभी तू याद रह बता।
5: चलिए कोई बात नहीं, ये बजा दे, अगर ना मिली तो कौन और बजा सकते हैं।
6: हाँ ना मिल
5: जाएगा, सुनवाई के भी चाहते नहीं।
6: हाँ तो रौरा सुने मैम लोग बोले साथी में सब कुछ, जितना लोग सुनते सब कुछ सुनबे करे।
5: चलिए तो फिर प्ले करते हैं और गाना।
6: जी मैडम जी, बजा
5: जी सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 एफएम में। जी, नाम बता दीजिए अपना।
0: हमारा नाम है बधु नारायण मुनि।
1: और कहाँ से?
0: ग्राम भलुई से, जिला सिवान, जामो बाजार।
1: अच्छा, तो कैसे बने हुआ?
0: ठीक बने। जय भवानी।
1: जय भवानी। तो बता दीजिए आज की फरमाइश।
0: आज के फरमाइश बा, तोरा मन दर्पण कहलाए। काजल फिल्म का गाना है
1: जी।
0: ये काजल फिल्म का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये भजन है।
1: अच्छा,
0: ये भजन है और इसको रवि साहब ने संगीत दिया है, लिखा है साहिल उद्यान साहब।
1: ठीक है, और गाना सुनाएंगे?
0: गाना तो सुनवाएंगे सब, आपको भी और रेडियो रेंजिंग के पूरे परिवार को भी, और पूरे सिवान जहाँ तक ये हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी जितने श्रोता हैं सबको।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है जी।
1: जी,
0: आपका सुनने को मिलेगा
1: आज नहीं तो कल बजे।
0: ठीक है जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो,
4: हेलो। तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
1: कैसी हैं मैम?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप? और आपका नाम? कृति जी। तो कैसी हैं आप?
1: बताइए भारती मैम कैसी हैं?
0: भारती मैम भी अच्छी हैं।
1: आप नहीं आई हैं?
0: नहीं,
1: उनका तो नहीं चल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है।
0: जी जी, अभी बहुत जल्द चलेगा।
1: और सब बताइए?
0: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए? खाना हो गया आपका? जी। तो क्या है आज की
1: फरमाइश?
0: कौन सा
1: बता रहे हो?
0: हमारा पीछे तोड़ा मारा हाथ।

0: ये गाना तो बहुत अच्छा
1: है। थैंक यू
0: जी, वेलकम। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
1: जी, आपको, आपको
0: तृप्ति जी, तो फिर मैं प्ले करती हूँ गाना आपका।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: जी क्या हाल चाल है जी आपका?
1: बस मैडम जी दुकान पर बैठे सिलाई कर रहे हैं।
0: अच्छा बारिश वरिश हो रहा है?
1: बारिश मारिश ने हो रहा है, पानी गया चला गया अब तो वापस।
0: अच्छा
1: जी
0: बढ़िया। तो खाना वाना हो गया है आपका?
1: जी हो गया, दाल बाटी बनाई थी आज। आइए भोजन कर लीजिए।
0: जी जी बिल्कुल आएंगे।
1: कौन भारती जी बोल रही है क्या?
0: नहीं।
1: सोनी जी?
0: नहीं।
1: मनोरमा जी?
0: हाँ जी।
1: जी तो मैडम जी मेरी पिक्चर का नाम तो पता नहीं लेकिन अल्ताफ राजा का गाना है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
0: थोड़े इंतजार का मजा लीजिए,
1: अल्ताफ राजा ने गाया है ये। इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ राजा का है ये?
0: जी जी बिल्कुल।
1: और ये गाना आप तीनों मैडमों को डेडिकेट रहेगा, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, और जितने भी सभी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
0: ओके जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
1: कब बजेगा ये?
0: शाम को।
1: जी मैडम धन्यवाद।
0: ओके जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: नमस्कार।
2: जी सब ठीक है, आप बताएंगे?
3: काम कर रहे हैं, काम कर रहे।
2: अच्छा, सॉरी, ठीक बस
3: करो तभी क्या हुई है, काम से मैं काम एक बजे वाला रहा हूँ। गाना सुना दिए दीदी आशी के, कौन सी के गाना? दीदी आशी फिल्म नहीं थे?
2: कौन गाना?
3: दीदी आशी फिल्म में गाना है, कौन सा गाना है?
2: गाना दो लाइन बता देती तो सही रही।
3: दीदी आशी फिल्म कौन सी गाना बजा दो?
2: एक बार गाना क्योंकि सुनवाई के लिए चाहता नहीं।
3: गाना तो बहुत लोग सुनने वाला, सब देखने वाले, नाम आज ऐसे भी लेकर रह गए।
2: अपना नाम बता
3: सुनने वाला अपन गाना सुन। हमारा नाम प्रमोद कुमार।
2: और कहाँ से?
3: काला मटी में देखता
2: है।
3: अभी तो हमें तो अभी तो संजाम में है। रहेंगी रहेंगी।
2: मौसम कैसा रहा आने के?
3: मौसम मैंने बारिश के हल्का हल्का भर हुआ होने गोपालगंज में।
2: गोपालगंज में भी ठीक था, कभी धूप होता कभी छा होता।
3: ऐसा ही बार धूप निकले तो अच्छा होता, बारिश तो अभी नहीं खेल गया।
2: चलिए तो फिर
3: आज बाजी काल,
2: आज ना तो कल बाजी रही दोनों दिन में जी। तो प्ले कर देने, सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: महाराष्ट्र हाँ, गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आज का जो फिल्म है, आज का जो मतलब गोरी हकदारिया गाना सुनने का।
1: कौन सा?
0: गोरी हकदारिया, हरी हरी चोरिया,
1: गोरी कलैया।
0: हाँ, गोरी कलैया आज का जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्रों को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ, दोस्त मित्र का ऐसा। ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते
3: जी।
2: नेहा जी कैसी हैं? जी जी, मैं तो ठीक हूँ। और नाश्ता पानी हो गया? चलिए बढ़िया। तो क्या है आज की फरमाइश?
3: फरमाइश
2: बात नहीं की, अरे वो सोच के बता दी दो मिनट में।
3: मैडम जी
2: आवाज़ क्या बोल रही है, एक बार और बताइए। तो
3: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा आता है। दिव्या मैडम जब आती है कॉल है
2: जी,
3: ऐसा ही आपका आवाज आता है, इसीलिए घर पर बोलते
2: हैं। चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं।
3: मेरा आवाज बहुत अच्छा नहीं आता है?
2: नहीं नहीं, आपका भी आवाज अच्छा। तो फिर गाना याद आया आपको?
3: गाना याद सुना दीजिए, साई वाले साई वाले।
2: साहिबा जी। अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
3: गाना भाषी मैडम को जितना सुनता है इसको दो सब सुनता है तो उससे का।
2: ओके नेहा जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
3: जी मैडम।
2: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, मैं सिकंदर से बोल रहा हूँ। मैं स्कूटर
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: बोलते हैं मैम की गाना सुने के बाद
1: बता दी,
0: तो जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, ये वाला गाना सुन।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम उनको।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको मैं जितने रेडियो रिंकिंग सुन रहे सभी सुन, और एक कमरान भाई है उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी, ले करते हैं गाना आपका।
0: अच्छा, कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: पहचान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
2: hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
4: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
5: हम भी ठीक है, आप लोग दुआ से।
4: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
4: जी तो कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
4: जी हम लोग भी बढ़िया है।
5: चलिए बढ़िया के काम है
4: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
5: जी जी नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
4: हाँ हाँ हो गया। तो फिर क्या है
5: आपका नाम मैम?
4: जी मेरा नाम मनोरमा।
5: मनोरमा, अच्छा आज दूसरी बार बात हो रही है।
4: जी जी
5: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
4: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
5: मैम गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
4: चलिए कोई बात नहीं,
5: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
4: जी जी बिल्कुल।
5: नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, बस इतना ही।
4: जी इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
5: कहाँ इतना गा रहे हैं, आप लोग सब शोर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
4: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
5: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
4: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं। पर जो गाना बताए वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
5: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंजन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
4: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले कर देंगे ना आपका।
5: थैंक यू मैम।
4: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंजन 90.4 FM।
5: थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, गरियाबंद नंबर 1 से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं
0: मनोरमा मैम
1: जी।
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: ये सो चलता है
1: जी जी
0: तो आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मूवी से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: क्या गा के बता सकते?
0: गा के क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो इंजन जहाँ से सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: ले सकती है आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
6: जी, मैं हाजरा बात कर रही हूँ सूरत से।
5: जी कैसी हैं आप?
6: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
5: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
6: तो गाना सुना है
5: जी,
6: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मैं जो पुराना वाला सॉन्ग है ना वही वाला।
5: आप दो लाइन गा के सुनाएंगे मुझे?
6: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
5: जी जी
6: वही गाना। दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
5: ओके तो सुना दीजिए।

0: जी आप तो बहुत अच्छा जा रही हैं जी। थैंक यू मैम। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। जी जी क्या
1: हाल चाल
0: बा?
1: हाल चाल तो नहीं चल रहा
0: जी। आवाज में कट गया होते
1: हाँ रुको के कट जाता है नीचे भाग जाता था और वो तो
0: कहते नहीं कट
1: जाना सुना दी
0: बता दी
1: तुम्हारा
0: एक बार और बता दी
1: मेरे तुम्हारा काम है
0: जी और गाना सुनवाए के भी चाहते नहीं
1: अभी
0: तो फिर प्ले करते हैं जब गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: भागे भागे फिरते हैं.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का. तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं. नंबर है 8029494 पर कॉल करके. तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
5: सुनो दिल से.

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: मैया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पर

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।